मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1200-233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी एफएम है। आज मंगलवार 19 मई 2026 है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार मई 2026। समय सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी FM है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तब तक प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर

0: मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम में 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें, विषय है धान की उन्नत प्रजातियां। जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह।
2: आज हम धान की उन्नत प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका बीज उन्नत किस्म का एवं प्रमाणित होने के साथ साथ अधिकतम पैदावार वाला होना चाहिए। धान की प्रजातियाँ वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन इन किस्मों की कुछ अपनी विशेषताएँ भी हैं। इनमें से कुछ प्रजातियाँ क्षेत्रगत होती हैं, यानी जो प्रजाति जिस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो उसे उसी क्षेत्र में ही बोना चाहिए। दूसरे क्षेत्रों में लगाने से उसकी सही पैदावार नहीं मिल पाती है। कुछ प्रजातियों का विकास मिट्टी की दशा के अनुसार किया जाता है, जैसे ऊसर के लिए विकसित प्रजातियाँ या जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए संस्तुत प्रजातियाँ। ऊसर मिट्टी में खेती करने के लिए धान की जो प्रजातियाँ स्वीकृत हैं वे ऊसर मिट्टी में ही ज़्यादा पैदावार देती हैं। अन्य मिट्टियों में इनकी पैदावार अपेक्षाकृत कम होती है। इसी तरह जलमग्न क्षेत्रों के लिए अलग से प्रजातियाँ स्वीकृत हैं, जिनकी खेती इस तरह के क्षेत्रों में ही करनी चाहिए। धान की कुछ ऐसी भी प्रजातियाँ स्वीकृत हैं जो कि सुगंधित होती हैं। धान की प्रजातियों का चयन करते समय एक बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, वह है इसका समय। धान की कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो कि जल्दी तैयार होती हैं। इन किस्मों के पकने में 100 से 120 दिन का समय लगता है। कुछ किस्में देर से पकने वाली होती हैं, यानी इनके पकने में 120 से 140 दिन का समय लगता है। इसके अलावा कुछ धान की प्रजातियाँ काफ़ी देर से पकती हैं, अतः जिन प्रजातियों को तैयार होने में लंबा समय लगता है उनकी रोपाई थोड़ा पहले करनी चाहिए ताकि उसे तैयार होने में पर्याप्त समय मिल सके। जो प्रजातियाँ जल्दी तैयार होती हैं उन्हें अपेक्षाकृत देर से रोपना चाहिए। ये तो कुछ बातें रहीं प्रजातियों के चुनाव से संबंधित। अब इन प्रजातियों की चर्चा। प्रदेश में धान की खेती 2 दशाओं में करते हैं। असिंचित दशा यानी जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, यानी वर्षा पर आश्रित खेती। दूसरी सिंचित दशा है यानी जहाँ पानी के साधन उपलब्ध हैं। असिंचित दशा में अगर धान की खेती बुआई करके करना चाहते हैं तो नरेंद्र 97, नरेंद्र 118 और गोविंद प्रजातियों में से चुनाव करना चाहिए। अगर रोपाई करना चाहते हैं तो साकेत 4, नरेंद्र 118 और गोविंद प्रजातियों की नर्सरी डालें। बात आती है सिंचित दशा की। ऐसे क्षेत्रों के लिए शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियां हैं उनमें नरेंद्र 80, नरेंद्र 118, नरेंद्र 97 प्रजातियां हैं। मध्य देर से यानी कि 120 से 140 दिन में तैयार होने वाली जो प्रजातियां हैं उनमें प्रमुख हैं मालवीय 2-1, मालवीय 4-3, नरेंद्र 359, प्रो एग्रो 64-44, IR 36, सरजू 52, सीता और पंतधान 4। जो प्रजातियां पकने में 140 दिन से भी अधिक समय लेती हैं वह हैं क्रॉस 116, टाइप 100, टाइप 9, टाइप 23, मसूरी, साभा मसूरी यानी BPT 5204, MTU 7029।

सवाड़ा और MTU 1001। धान की सुगंधित किस्में भी हैं, जैसे टाइप 3 पूसा बासमती 1, बासमती 370, हरियाणा बासमती और तरावड़ी बासमती। इसके अलावा सुगंध 3, ये सब प्रजातियां हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं। अगर ऊसर ज़मीन है तो ऐसे क्षेत्रों में नरेंद्र ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर धान 2, नरेंद्र ऊसर धान 3, CSR 10, CSR 13, CSR 30 प्रजातियों को बो सकते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र एवं परिस्थितियों के अनुसार धान की प्रजातियों का चुनाव करें और फिर उनकी खेती करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था धान की उन्नत प्रजातियां। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

विश्वास का अर्थ ये नहीं होता कि जो मैं चाहूँगा वही भगवान करेंगे, परंतु ये है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा।

भक्ति वो दीप है जो अंधेरे में भी जलता है, श्रद्धा वो शक्ति है जो हर तूफान से लड़ता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना, जिसमें गायक कलाकार थे हरिओम शरण, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल और चंद्रनाथ। ये आकाशवाणी का वाराणसी FM है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय है रफ्तार और मंजिल।
1: तेजी से बदलाव आ रहे हैं। दुनिया बहुत तीव्र गति से दौड़ती चली जा रही है। उसकी चाहत इस गति में किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाहती, इसलिए सभी लोग इस दौड़ में सम्मिलित होते जा रहे हैं। आगे बढ़ने की होड़, अधिक पैसा कमाने की होड़, बहुत जल्दी बहुत पाने की तीव्र इच्छा और तेज गति से सब काम करने की चाहत ने आज व्यक्ति की जीवन शैली में बहुत व्यस्तता ला दी है। आज दुनिया में उन वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है जिनसे कम परिश्रम में तेज गति से काम किया जा सके, और उन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं रह गई है जिनसे काम करने में बहुत अधिक मेहनत और समय लगता है। तेज रफ्तार से इंटरनेट सर्फिंग की सुविधा आम तौर पर उपलब्ध है। आज पल भर में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अपने संदेश पहुंचाए जा सकते हैं और किसी से भी संपर्क साधा जा सकता है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रफ्तार की इस दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ावा हो रहा है, और यह भी सच है कि रफ्तार का यह आकर्षण न तो कभी खत्म होगा और न इससे और तेज रफ्तार की चाहत ही खत्म होगी। दरअसल तेजी से आगे बढ़ने की चाहत ने इंसान को हमेशा से रोमांचित किया है। इसी रोमांच के गर्भ से इंसान में उड़ने की इच्छा पैदा हुई और राइट बंधुओं का हवाई जहाज निकला, और बाद में इसी रफ्तार की चाहत ने सुपरसोनिक जैसे तेज रफ्तार के रोमांचक पर्याय माने जाने वाले विमान दिए। मनुष्य के जीवन में छाई रहने वाली ये रफ्तार केवल उड़ने दौड़ने यानी यातायात और परिवहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि रफ्तार हमारी हर गतिविधि का हिस्सा है। इतिहास का अवलोकन करने से ये भी पता चलता है कि इस रफ्तार में लगातार तेजी ही आई है और उसमें कभी कमी नहीं आई। फिर उसकी गतिविधि चाहे कुछ भी क्यों न हो, यहां तक कि 1000 साल पहले इंसान जितनी तेज गति से दौड़ता था, आज उसकी रफ्तार उस समय की तुलना में 100% से भी ज्यादा बढ़ गई है। तेज गति से दौड़ने की ये चाहत ओलंपिक खेलों में नजर आती है, क्योंकि आज से आधी शताब्दी पहले के लोग 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड से कम समय में पूरी करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, और आज ये दूरी इससे भी कम समय में पूरी की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि इंसान की तेज दौड़ने की रफ्तार 70 से 80% और बढ़ सकती है। हमारे यातायात के साधनों की आज जो रफ्तार है, उसकी कल्पना 200 साल पहले के लोग कर भी नहीं सकते थे। मानव जीवन में आने वाली ये रफ्तार बुरी नहीं है। ये रफ्तार कई तरह की उपलब्धियों की प्रतीक है। रफ्तार का अर्थ है विकास और तरक्की। इसका अर्थ है प्रतियोगिता, सक्रियता और उज्ज्वल भविष्य। ये रफ्तार इस दृष्टि से आगे बढ़ने और बेहतर प्रदर्शन करने का माध्यम है। तेज गति से दौड़ती इस दुनिया में रहने वाले लोगों ने जहां आधुनिक तकनीक की वजह से हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, वहीं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी गंवाया है। तेजी से भागती हुई इस दुनिया को देखने पर कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी होती है कि दुनिया किस दिशा की तरफ जा रही है, दुनिया के लोग क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद से दूर होते जा रहे हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं। आज की दुनिया में दिल के रिश्ते सच्चे दिखते प्रतीत नहीं होते। कहीं किसी पर भरोसा करने में संदेह होता है, दूसरों पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को यदि कुछ तलाशना चाहिए

0: तो अपने आप को। व्यक्ति यदि स्वयं को समझ सकेगा, अपनी आंतरिक शक्तियों को जान सकेगा, उनका सदुपयोग कर सकेगा और अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कर पाएगा, तो इतना कुछ हासिल कर सकेगा जिसके समक्ष वर्तमान या भविष्य में होने वाली प्रगति भी उसे महत्वहीन लगेगी और वो जीवन की सच्ची सुख, शांति, समृद्धि और प्रसन्नता का हकदार हो जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, जिसका विषय था रफ्तार और मंजिल। आलेख और वचन थे अरुण पांडे के। ये आकाशवाणी का वाराणसी FM है। प्रस्तुत कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज का विषय है दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे। जानकारी देंगे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी।
2: श्रोताओं, मैं प्रोफेसर TP चतुर्वेदी इस समय सीनियर प्रोफेसर हूँ फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज दंत संकाय BHU वाराणसी में। और आज मुझे आपसे चर्चा करनी है कि दांतों का प्रत्यारोपण के बारे में, कि ये कैसे होता है, क्या होता है और कब जरूरत इसकी पड़ती है। दांतों का प्रत्यारोपण, या इसको हम लोग ज़्यादातर बड़े कॉमन यूज में करते हैं डेंटल इम्प्लांट। दांत दो प्रकार के होते हैं, एक दूध वाले दांत होते हैं, बच्चों में शुरू के 6 महीने में आते हैं और एक 6 साल तक रहते हैं। सारे दांत 3 साल तक आ जाते हैं और 6 साल तक रहते हैं। 6 साल के बाद असली दांत शुरू होते हैं निकलना और 12 साल तक निकलते रहते हैं और अंतिम अक्कलदाड़ जो 18 साल में आती है। तो दो प्रकार के दांत होते हैं, दूध वाले दांत, एक असली दांत। और दांतों की बीमारियां ऐसी कुछ होती हैं जैसे पायरिया हुआ या डेंटल केरीज, दांतों का सड़ना हुआ, उससे दांत सुरक्षित रहते नहीं है। कभी कभी क्या होता है, दांत को निकालना पड़ता है। और जब दांत को निकालना पड़ता है, और निकालते क्यों है कि जबकि उनको पायरिया हो जाती है ऐसे में। और पायरिया के क्या लक्षण है, जैसा कि आप जानते हैं, पायरिया के लक्षण है मुंह से बदबू आना, या तो खून निकलना दांतों मसूड़ों से, और या तो दांत हिलने लगता है, और इसमें दर्द थोड़ा देर से होता है, इसलिए पायरिया का रोग लोगों को बहुत पता नहीं लग पाता है। और इसके अलावा दांत की सड़न होती है, आजकल जो हम लोगों का खान पान हो गया है उसकी वजह से दांत की सड़न होती रहती है। और ये सड़न जो है, कुछ भी हम लोग खाते हैं तो कोई ना कोई दांतों के में चिपक जाते हैं और उससे सड़न होती है, या कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिससे दांत खराब होते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें खाना जो कि दांतों और मुंह के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं जैसे दंत चिकित्सक, हम लोग दांत को बचाएं, दांत को सुरक्षित करें, मुंह का स्वास्थ्य रखें, लेकिन कभी कभी दांत को निकालना पड़ता है। और दांत जब निकालते हैं तो दांत एक कोई खराब हो गया जो कि बचने लायक नहीं है, ऐसे में दांत निकालते हैं। दांत एक भी निकल सकता है, दांत कई भी निकल सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग एक डेंटल इम्प्लांट, नई विधा आई है दांत को लगाने के लिए, और उसको इम्प्लांट को मतलब मेटल का है, उसी को प्रत्यारोपण कहते हैं। तो मेटल जो है हम लोग मसूड़ों और हड्डियों में इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग दांत लगाते हैं, उससे हम लोगों का चबाना काम होता है। अब ये पूछा जाता है कि क्या यही विधि है या कोई और भी विधि है दांत को लगाने का। देखिए, दांत जब निकले तो एक दांत हो या दो दांत हो या कई दांत निकल गए हों मुंह में, और ज्यादातर अगर उम्र का इफेक्ट है तो बाद में होता है 50-60 साल के बाद कई दांत भी निकालने पड़ सकते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जब दांत निकल गए तो उसको 3 तरह से हम लोग लगाते हैं। अगर अगल बगल दांत हो तो उसको हम लोग फिक्स ब्रिज करके लगा देते हैं, मतलब 2 दांतों के सपोर्ट में तीसरा दांत हम लोग लगा देते हैं अगर बीच वाला दांत अब्सेंट है। अगर 3-4 दांत अब्सेंट है लेकिन अगल बगल के उसके दांत तो ठीक है, तो उसको एक ब्रिज बना के एक खंभे की तरह उपयोग करके और फिर उसको लगा देते हैं, तो वो भी फिक्स दांत कहलाता है, फिक्स दांत लगा देते हैं। या दांत 1-2 दांत से ज्यादा है तो हम लोग निकालने लगाने वाला दांत लगाते हैं और वो भी एक स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर दांत फिक्स करना मेटल के, आजकल जो लेटेस्ट आ गया है कि मेटल का दांतों को प्रत्यारोपण करते हैं उसको, कि डेंटल इम्प्लांट है, और डेंटल इम्प्लांट जो है लगा होता है मेटल का होता है, टाइटेनियम इम्प्लांट, टाइटेनियम मटेरियल होता है। टाइटेनियम मटेरियल की खासियत ये होती है कि ये हड्डी जैसा हल्का होता है, हड्डी मुंह में कोई रिएक्शन नहीं करता है और मजबूत भी होता है। ऐसे टाइटेनियम इम्प्लांट से हम लोग दांतों को इंसर्ट करके लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन होता है कि क्या सभी में लगाया जा सकता है या नहीं, इसके लिए हम लोग कुछ जांच वगैरह कराते हैं और ऐसे लोगों को जिसमें हम लोग दांत लगा सकें, जिसमें कोई बहुत बीमारी ना हो या डायबिटीज ना हो, जैसे डायबिटीज बड़ा

0: होती है तो दिक्कत होती है, या तो और कोई बीमारी ना हो तभी हम लोग ये कोशिश करके लगाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज का विषय था दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी। ये आकाशवाणी का वाराणसी FM है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।
2: एपिसोड 89 89।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्रीराम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण।

उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, जिसे हम रिले करेंगे लखनऊ केंद्र से। दिन में 12:45 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे कमल कुमार का बांसुरी वादन। इन्हीं को आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर भी। इसी कार्यक्रम में आप रात्रि 10:30 पर सुनेंगे विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन भी।

दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज की कलाकार होंगी मोनिका मिश्रा, और रात्रि 8 बजे इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे उषा टंडन को। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर, विषय होगा एग्रो टूरिज्म और ग्रामीण विकास। जानकारी देंगे डॉक्टर निखिल कुमार सिंह। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे राधेश्याम सोटा वाले और साथी का गाया लोकगीत भी। इन्हीं का गाया लोकगीत आप सुन सकेंगे दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी।

महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम में आज का विषय होगा फेफड़े का संक्रमण, कारण, लक्षण और उपचार। जानकारी देंगे डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव।

युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर, जिसमें कार्यक्रम होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 बजे। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रोज की तरह सुबह 7 बजे, मधुरिमा सुबह 8:45 पर और रसमाधुरी रात्रि 8:15 पर।

0: प्रेषु एव लक्ष्यम् अतिक्रामितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: मॉर्निंग बनारस। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा घनी एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
1: हेलो, मैं पूजा, पहचाना?
2: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाने जो सब बुलाते हैं।
0: सूरज दादा अपनी लालिमा बिखेर चुके हैं, चिड़ियों का चहकना शुरू हो चुका है और आपके किचन से अदरक वाली चाय की खुशबू भी आने लगी होगी, है ना? लेकिन अगर अभी तक आंखें पूरी तरह नहीं खुली हैं, तो बस अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, अपनी आंखों पर रखिए और इस नई सुबह को दिल से कहिए थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं लाता, बल्कि हमारी जिंदगी का एक नया पन्ना खोलता है। कल क्या हुआ, कौन सी बात बुरी लगी, क्या छूट गया, उसे कल की रात के साथ वहीं छोड़ दीजिए। आज का दिन एक कोरा कागज है और इस पर क्या लिखना है ये पूरी तरह आपके हाथ में है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में हर सुबह हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपने सपनों के साथ सोते रहिए या फिर उठकर उन सपनों के पीछे भागना शुरू कर दीजिए। चॉइस आपकी है, लेकिन याद रखिएगा, आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आज का ये दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। तो चलिए आज के दिन को थोड़ा और स्पेशल बनाते हैं एक छोटे से हैप्पी टास्क के साथ। आज जब आप घर से बाहर निकले ना या दफ्तर पहुंचे, तो किसी भी एक इंसान को, चाहे वो आपके कलीग्स हो, आपके पेरेंट्स हो या रास्ते में मिलने वाला कोई अजनबी, उन्हें देखकर दिल से एक प्यारी सी स्माइल दीजिएगा। मुस्कान एक ऐसी चीज है दोस्तों जो मुफ्त में मिलती है, लेकिन सामने वाले का पूरा दिन अनमोल बना देती है। आज खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाइए। अगले कुछ मिनटों तक सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। ढेर सारी बातें होंगी, शहर का हाल चाल होगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले किस्से होंगे। लेकिन चलिए इस खूबसूरत सुबह को एक बेहद प्यारे और सुकून देने वाले सॉन्ग के साथ आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरजे पूजा, आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, जियो दिल से। शुभ मंगलवार।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 19 मई। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है शहर बनारस में आज। बनारस नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने नगर निगम के कर्मचारियों या नगर निगम कैंपस में बाहरियों द्वारा अवैध वसूली या भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए लैंडलाइन नंबर जारी किया है। नगर आयुक्त ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी कार्यालयों के पटल पर इस नंबर को लिखना अनिवार्य होगा और शिकायतकर्ता की डिटेल हर हाल में गोपनीय रखी जाएगी। इसलिए बिना डरे कोई भी नगर निगम के भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है। नगर आयुक्त ने आम जनता से अपील करते हुए कहा, नगर निगम के किसी भी कार्यालय में किसी भी काम के लिए यदि कोई भी अधिकारी, बाबू, कर्मचारी या चपरासी पैसे मांगता है तो जनता को घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ विशेष लैंडलाइन हेल्पलाइन नंबर 0542-22828384 डायल कर बिना अपना नाम और पता बताए शिकायत करना है। इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने निगम क्षेत्र में रहने वाले सभी से अपील की है कि वे किसी भी स्तर पर होने वाली अवैध वसूली के खिलाफ खुलकर सामने आएं और तत्काल इस नंबर पर जानकारी दें ताकि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नगर आयुक्त ने इस सार्वजनिक सूचना को निगम के सभी कार्यालयों, जोनल कार्यालयों और जलकल विभाग के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चिपकाने के निर्देश भी जारी किए हैं। बनारस संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्ष 2026 की पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व में 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को देखते हुए छात्र हित में आवेदन की अंतिम तिथि को पहले 17 मई 2026 तक विस्तारित किया गया था। अब पुनः प्राप्त अनुरोधों एवं अभ्यर्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा छात्र हित में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ाते हुए 18 मई

से 20 मई तक अंतिम अवसर के रूप में विस्तारित किया गया है। परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.gcup.admission.nic.in के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण किया जा सकता है। बनारस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर बीएचयू परिसर स्थित भारत कला में सोमवार को कला, इतिहास और संस्कृति से जुड़े विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संग्रहालय परिसर में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 16 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 25 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता कल्पनाओं को कैनवास पर उकेर कर कला के विविध रंग प्रस्तुत किए। वहीं बीएचयू के कला संकाय एवं वेल बीइंग सर्विसेज सेल की ओर चयनित विद्यार्थियों के लिए क्यूरेटेड वॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत कला भवन प्रशासन ने संग्रहालय में जल्द ही बनारस गैलरी शुरू किए जाने की जानकारी भी दी। संग्रहालय के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर निशांत ने बताया कि संग्रहालय की दूसरी मंजिल पर स्थित एक पुराने बंद हिस्से की मरम्मत के बाद उसे बनारस गैलरी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बनारस स्वयं में एक जीवंत संग्रहालय है, जहां प्राचीनता और आधुनिकता साथ साथ दिखाई देती है। नई गैलरी में प्राचीन काशी से लेकर आधुनिक बनारस तक की सांस्कृतिक यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। बनारस वाराणसी में स्वजनगणना कार्य तेजी से चल रहा है। यही कारण है कि 7 मई से अभी तक 33,000 से ज्यादा मकानों का स्वजनगणना व हाउस लिस्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है। स्वजनगणना अभियान 7 मई से संचालित है, जो 21 मई तक चलेगा, यानी महज 3 दिन इसमें शेष बचे हैं। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक वास्तविक जनगणना का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त प्रांगणों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा संपादित किया जाना है। प्रांगणक घर घर जाकर यह कार्य पूरा करेंगे। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनगणना कार्य को समय से पूरा करने का आह्वान जनपदवासियों से किया है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। स्वजनगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करते हैं, जिससे आंकड़े अधिक शुद्ध, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्राप्त होते हैं। उन्होंने जनपदवासियों से आधिकारिक संख्या में स्वजनगणना करने तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करने की अपील की। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है शहर बनारस में आज, और अब बात करते हैं इतिहास की। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों में। ग्यारह में आज ही के दिन 98 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। फिल्म मानेर मानुस को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा फिल्म दबंग को सर्वाधिक मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 1934 में भारतीय तमिल सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका पी लीला का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1938 में आज ही के दिन कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1904 में आज ही के दिन टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन हुआ था। और आज ही के दिन हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 1979 में हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब कार्यक्रम में समय हो गया है उस सेगमेंट का जिसका रहता है आप सबको इंतजार। काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी। दोस्तों, हमारा ये जो शहर है ना बनारस, इसकी मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि यहाँ की आबो हवा से साहित्य, कला और विद्वता की खुशबू आती है। इस शहर ने दुनिया को ऐसे ऐसे अनमोल रत्न दिए हैं जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। आज काशी रत्न में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही दैदीप्यमान नक्षत्र की, जिनके लिखे निबंध और उपन्यास आज भी हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। द्विवेदी जी सिर्फ एक लेखक या प्रोफेसर नहीं थे, वो अपने आप में साहित्य की एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। उनका जन्म भले ही बलिया में हुआ था, लेकिन उनकी विद्वता को निखारने और सवारने में हमारी काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा, जहां उन्होंने लंबे समय तक अध्यापन भी किया। द्विवेदी जी की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या थी? वो गंभीर से गंभीर बात को भी इतने सरल और मजेदार अंदाज में कह जाते थे कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उन्होंने कबीरदास जी पर जो शोध किया,

0: उसने कबीर को देखने का दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। उनका एक बड़ा ही खूबसूरत विचार है जो आज के समय में हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए। वो कहते थे, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखे। कितनी सीधी और सच्ची बात है ना? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर दूसरों के सुख दुख को भूलते जा रहे हैं, लेकिन द्विवेदी जी हमें हमेशा इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहे। चाहे उनका उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा हो, अशोक के फूल हो, या फिर उनका मशहूर निबंध कुटज। कुटज के पौधे के जरिए उन्होंने हम सबको सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, पत्थर की छाती फाड़ कर भी जीने की राह निकाली जा सकती है। सुख दुख तो मन के विकल्प हैं। अगर मन मजबूत है तो हर मुश्किल आसान है। द्विवेदी जी का लेखन हमें आज भी सिखाता है कि अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर भी हम आधुनिक सोच रख सकते हैं। तो आज जब आप अपने काम पर निकलें, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इस बात को साथ लेकर चलिएगा कि परिस्थितियां जैसी भी हों, कुटज की तरह मुस्कुराते रहिए और अपनी मनुष्यता को कभी मत खोइए। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
2: सो बनारस, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे अनुमति लेने का। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहती हूं और कहती रहूंगी कि खुद से प्यार करना, खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे ना, तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश रख पाएंगे, है ना? मेरी इस बात से सहमत है ना आप? तो बस अपने आप को खुश रखना आज से, अभी से, बस इसी पल से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास सबको आप खुश रख पाएंगे। तो बस अब अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी ट्यूसडे बनारस, गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धीमे से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं,

0: प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त। कहा, देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा वहां का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विकास का प्रतीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इससे पहले 17 मई को स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा।
1: आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: मंत्रिमंडल ने कल दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपए की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GK

0: के पेपर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वाराणसी के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति पुनः आश्वस्त किया। वहीं पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: लखीमपुर खीरी में कल सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतिस्पर्धा में 20 राज्यों की टीमें आज से 10 स्वर्ण सहित 30 पदकों के लिए दावेदारी करने उतर रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के परिणाम स्वरूप गोरखपुर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श।

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज आप सुनेंगे कमल कुमार का बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत की है श्याम कुमार मिश्रा ने। राग है भैरव।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम जिसमें आपने सुना कमल कुमार का बांसुरी वादन अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से
2: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य

0: में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंडी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय

0: को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमरीका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मारियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इकतसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने बढ़ती हुई तवानाई की जरूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तय अज़्म और काबिले तजदीद तवानाई में तेजी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीकेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत माब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाली यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभा जाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक और इख्तिरा, पायदारी, काबिल तरजीह तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकतदारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमायाकारी के रबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। यह सरबराह कॉन्फ्रेंस खत्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्यालात का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वज़ीर आज़म के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। وزیراعظم مودی اٹلی کی وزیراعظم میلونی کے ساتھ دو طرفہ بات

0: बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत पुरएतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलावी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें की। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जाँच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गाँव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसानात की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाबतगियों और काले धन को जायज़ बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है, जिसमें गुवाहाटी को मरहला एक के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज़ है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR बरकरार रखने की ज़रूरत खत्म कर दी है। IFR इजाफी बफर होता है जो सरमायाकारी की कदर में गिरावट से तहफ़ के लिए कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। PIB ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहद अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मनसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतल्लिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबार ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज होने से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल की छह सुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुजाकिरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरेतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में RGKR मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम मधुरिमा, लेकिन उसके पहले ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

मधुरिमा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी पुष्कर का नमस्कार। दोस्तों, गर्मी अभी काफ़ी बढ़ी हुई है। गर्मी का नाम सुनते ही सबसे पहले धूप, पसीना और वो रस भरे आम याद आते हैं। वैसे तो ये मौसम काफ़ी भारी पड़ता है, पर इसके अपने ही मज़े हैं। चलिए, इस गर्मी के मौसम के थोड़े अच्छे और थोड़े मुश्किल पहलुओं पर बात करते हैं, लेकिन उसके पहले सुनिए इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था गर्मी के बारे में। गर्मी का आना मतलब एसी और कूलर के दिन आ जाना। इस वक्त तो धूप अपना पूरा रंग दिखा रही होती है। दोपहर को घर से निकलना मतलब एक टास्क बन जाता है। घर का सबसे पॉपुलर कोना वही होता है कमरे में जहाँ एसी या कूलर चल चल रहा हो। फैशन ट्रेंड भी चेंज होता है। हल्के रंग के और लूज कॉटन के कपड़े जो इस मौसम में सबसे ज्यादा बचाव का काम करते हैं। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा गीत।

दोस्तों, अगर इस मौसम में कुछ सबसे बेहतरीन होता है तो वो है आम। चाहे दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, हर किसी का अपना एक फेवरेट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको हम भूल नहीं पाते हैं, चाहे वो बचपन की यादें हों या बचपन का समर वेकेशंस हो, गर्मियों का जिक्र हो और नानी दादी का घर या समर वेकेशंस याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोपहर को छुपकर धूप में खेलना और फिर डाट खाना, रात को छत पर बिस्तर लगाकर तारों को देखते हुए सोना और ठंडी हवा का इंतजार करना, वो सब बातें याद आती हैं। खुद को सुरक्षित भी रखना होता है, इस मौसम में थोड़ा ध्यान भी देना होता है। जैसे पानी पीते रहना चाहिए, छाछ पीते रहना चाहिए, धूप से हमको बचाव करना चाहिए। जब भी बाहर निकलें, आप अपने आप को पूरे बाह का कपड़ा पहनकर निकलें, छाता लें और कुछ ज़रूरी चीज़ें रखें। इस पर हम और भी कुछ बातें करेंगे दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

गर्मी पर जितनी बातें की जाएं कम हैं। ये मौसम ही ऐसा है जो हमारी पूरी लाइफस्टाइल को बदल देता है, हमारे खाने पीने से लेकर कपड़ों और सोने के तरीके तक। चलिए इस गर्मी के मौसम के कुछ और मज़ेदार और ध्यान रखने वाले पहलुओं पर बात करते हैं। देसी जुगाड़ और ठंडे ड्रिंक्स। जब टेम्परेचर 40 डिग्री के पार जाता है तो कोल्ड ड्रिंक्स से ज़्यादा हमारे देसी ड्रिंक्स काम आते हैं, जो शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। जैसे कि आम पन्ना, कच्चे आम का ये ड्रिंक लू से बचाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। सत्तू के शरबत। बिहार और यूपी का ये सुपर फूड प्रोटीन से भरपूर होता है और पेट को ठंडक भी देता है। या फिर गन्ने का रस हो, सड़क किनारे मिलने वाला बर्फ़ का ठंडा ठंडा गन्ने का रस, जिसमें नींबू और पुदीना मिला हो, एकदम तरोताज़ा कर देता है। इसी के साथ कुछ और भी है जो आपको तरोताज़ा रखते हैं और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, जो पेट को ठंडक देते हैं। चाहे नींबू पानी हो, लस्सी हो, छाछ हो, और वो बचपन वाली आइस गोला या कुल्फी हो। दोस्तों, और भी कई सारे पहलू और किस्सों के बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले सुनते हैं हम इस कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पहले के वक्त में गर्मियों की रातें बहुत यादगार होती थीं, चाहे छत पर पानी छिड़कना हो या फिर तारों की छांव में सोना हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं पुष्कर यानी इस कार्यक्रम मधुरिमा से इजाज़त लेता हूँ। अगला कार्यक्रम होगा हमारा
1: आकाशवाणी का
0: लखनऊ।
1: लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का।
2: बस्ती जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। जिले में गौशाला के रखरखाव और गर्मी में गौवंश की सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम के अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में हर गौशाला के लिए नोडल अधिकारी तय किए गए। बस्ती में गौशालाओं की बदतर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कृतिका जोशना ने विभागीय अधिकारियों और सभी शासकीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने बताया,
3: हमने सभी गौशालाओं को लेकर के एक विस्तृत बैठक की। इसमें हमने कुछ नए नोडल अधिकारी भी

0: बनाए हैं। मीटिंग में हमने सबसे पहले तो जितने भी जीओ हैं उनसे सभी लोगों को अवगत करा दिया, इनको ये भी बताया कि जब ये निरीक्षण करने जाएं तो किस प्रारूप पे इनको निरीक्षण करना है, एज वेल एज गौशाला में इनको क्या देखना है। उसी के साथ गर्मी से बचाव के लिए सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
1: राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में प्राचार्य डॉक्टर विजय प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एवं जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने छात्रों को एकाग्रचित होकर पढ़ने तथा मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। सम्मान समारोह में हाई स्कूल एवं इंटर के मेधावी 10 छात्रों व गृह परीक्षा में मेधावी छात्रों को प्रशस्त पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मृत्युंजय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम को मूर्त रूप अजय प्रकाश लाल व अमित यादव द्वारा दिया गया। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा खाड़ी देशों में मौजूद हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन और ऊर्जा की बचत की गई अपील पर मंडल के ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से देश हित में एवं मौजूदा हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की हर एक बूंद की बचत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इसको लेकर अपने निजी वाहनों को छोड़ बस टैक्सी व साइकिल से ऑफिस आने की सलाह दी गई, जिसके क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस निमित्त शासकीय वाहन का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा अपने आवास से साइकिल द्वारा कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों का संपादन किया गया एवं ईंधन की बचत के लिए मंडल के ग्राम विकास विभाग से संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की गई कि वे देश हित में कम से कम वाहनों का प्रयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बस्ती जिले में तहसील जूसों में फरियादियों की लगी भीड़, सदर तहसील में 90 शिकायतों में 6 का निस्तारण मौके पर कराया गया। बस्ती जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ शनिवार को विक्रम ज्योत में हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें पहले दिन 7 तथा दूसरे दिन 4 सत्र सम्पन्न होंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने प्रदेश के सम्मुख चुनौतियों एवं निदान के हमारे प्रयास विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बढ़ती शक्ति से घबराई देश विरोधी ताकतें सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दूसरे सत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी वैचारिक अधिष्ठान विषय पर अपने विचार रखे। बस्ती में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा कि गौ आश्रय को अब 5 से 7 हेक्टेयर में निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पशुपालकों की संख्या निरंतर घट रही है, लोगों को पशु पालने के लिए निराश्रित पशुओं के देखभाल के लिए जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार गौ सेवा को केवल सांस्कृतिक दायित्व नहीं एक पवित्र के रूप में स्वीकार करते हुए सतत कार्य कर रही है। बस्ती जिले के सलटौआ विकास खंड में गरीबों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली, अब महंगे मैरिज हॉल की टेंशन खत्म होगी। यहां वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ मीटिंग और सरकारी आयोजन भी हो सकेंगे। ये बहुउद्देशीय भवन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गरीब परिवारों के आत्मसम्मान की नई नींव है। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने बताया।
2: मुझे लगता है जनपद ही नहीं प्रदेश का पहला ऐसा विकास खंड होगा जहां ऐसा भवन का निर्माण कराया जा रहा है जहां गरीब परिवार सिर्फ इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट देकर अपने बेटियों की शादी यहां पर ऑर्गेनाइज करा सकते।
1: बस्ती जिले की जिलाधिकारी कृतिका जोशना द्वारा जनपद में विभिन्न विकास खंडों के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में साफ सफाई, छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था तथा मिड डे मील की गुणवत्ता का गहनता से परीक्षण किया गया। निरीक्षण की शुरुआत विकास खंड बनकटी स्थित पीएम श्री विद्यालय देवमी से हुई। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। वही जिलाधिकारी कम्पोजिट विद्यालय डाडीडीहा पहुंची जहां कक्षाएं संचालित होती पाई गयी। जिलाधिकारी ने बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और परीक्षण किया तथा आंगनबाड़ी में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर प्रतीक्षा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई। बच्चों को परोसी गई रोटियां मोटी एवं जली हुई पाई गई। भोजन की खराब गुणवत्ता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापिका अनीता द्विवेदी और रसोईया के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। बस्ती जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर फीटा कार के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जेल में महिलाओं द्वारा बनाए गए सजावटी सामानों की न्यायमूर्ति ने सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सुलह समझौता पर आधारित मामलों का निस्तारण होता है। बस्ती जिले में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 2022 की तरह 2027 में भी समाजवादी पार्टी का बुरा हस्त्र होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में करप्शन की समाप्ति का जनादेश है। बंगाल में गुंडागर्दी, बंगाल में हिंसा का रोहिंग्या और बांग्लादेशी की जो बड़ी मात्रा में इसी बंगाल के रास्ते से देश में हमारी संपत्तियों पर जिसका अधिकार भारत के नागरिकों का था उस पर आज बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ केवल हमारे देश के लोगों का कब्जा होगा।
3: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का।
4: सोनभद्र में

दिनों आधी तूफान से बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई है। आंधी और तूफान के नुकसान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत आधी तूफान में हो गई, जबकि दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हुए। आधी तूफान के चलते अभी भी कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठप ही पड़ी है। जगह जगह बिजली के पोल उखड़ गए हैं, जिसे लगातार सुव्यवस्थित किया जा रहा है। आम के फल से लदे वृक्षों के फल बड़े

0: फल से लदे वृक्षों के फल बड़े पैमाने पर गिर गए हैं। जिलाधिकारी ने आधी तूफान में मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। सोनभद्र में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गुलाब जामुन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। अब तक ऊर्जा के क्षेत्र में पहचान रखने वाले सोनभद्र को अब गुलाब जामुन मिष्ठान के रूप में भी जाना जाएगा। परंपरागत कारीगरों को प्रोफेशनल कारीगर बनाने के लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार लोन भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उनके हुनर को बढ़ावा मिल सके। जनपद सोनभद्र में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में नई उड़ान मिल रही है। जनपद के करीब 2000 युवाओं को ब्याज मुक्त 100% धनराशि दी गई है। सोनभद्र में 5 दिवसीय अंश निर्धारण का विशेष अभियान चलाया गया। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान में जनपद की चारों तहसीलों को मिलाकर लगभग 20,000 से ज्यादा खाता धारकों के अंश का निर्धारण किया गया। जनपद सोनभद्र जो पूरे देश को विद्युत आपूर्ति करता है, यहाँ की बिजली उत्पादन से देश की राजधानी दिल्ली को रोशनी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य की जनपद के ही 834 मजरों को आज तक आजादी के लंबे अंतराल के बाद भी बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकी है। नवागत जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने इस तरफ विशेष अभियान के तहत हर हाल में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने के विशेष निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य की प्रत्येक सप्ताह में खुद मॉनिटरिंग अपने पास रखी है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश से बिजली विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिन मजरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो अति दूरू क्षेत्र है। ऐसे में इस अभियान को अमली जामा पहनाना काफी परेशानियों भरा है। सोनभद्र में विगत माह भर के अंदर में 2 दर्जन से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो गई हैं। आए दिन ओवरलोड ट्रकों के संचालन से दुर्घटनाओं का घटित होना जनपद के लिए अब आम बात हो गई है। परिवहन विभाग के साथ साथ खनन विभाग हर हाल में ओवरलोड वाहनों के संचालन को चालू रखना चाहता है। इसके लिए बाकायदा खनन और परिवहन विभाग अंदर खाने से अवैध वसूली करते हैं। जनपद सोनभद्र में प्रारंभ हुए जनगणना के कार्य में सरकारी अमला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 7 मई से प्रारंभ हुई जनगणना के प्रथम दिवस पर ही कुल 19,984 लोगों ने स्वगणना कर पूरे प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक गणना कर प्रदेश का प्रथम जिला बनने का गौरव हासिल किया है। जिलाधिकारी चर्चित दौड़ के कठिन प्रयास से इस अभियान को अमली जमा पहनाया जा सका है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जनगणना उस देश की आगामी विकास की धुरी होती है। जनगणना के आधार पर ही विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता है। जनपद में हाल के दिनों में तेज धूप और लू से आम जन जीवन प्रभावित है। तेज धूप का आलम यह है कि सुबह 9 बजे के बाद से लोग घर में सिमट जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है, जो देर शाम होने के बाद ही सड़कों पर रौनक नजर आ रही है। सर्वाधिक परेशानी जानवरों पंछियों को देखने में मिल रही है। हालांकि गौशालाओं में पीने के पानी की विशेष व्यवस्था के निर्देश हैं, जबकि नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के लिए विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। हर ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर पेयजल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी जगह जगह शरबत के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई।
3: मीडियम 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

काले रंग की जैकेट, नीले रंग का जीन्स पैंट है। इनके बारे में किसी को कोई जानकारी प्राप्त हो तो निकट के थाने या इस नंबर पर सूचित करें, 9140968287। नंबर दोबारा मैं बोलता हूँ, 9140968287।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक भेलुपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार आकाश मणि त्रिपाठी निवासी भेलुपुर वाराणसी थाना लंका, ये दिनांक 20 जनवरी 2026 से बिरदोपुर कमच्छा वाराणसी से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है। उम्र 31 साल, रंग सांवला, कद 5 फीट 7 इंच, पहनावा सफेद ऑरेंज व

कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार बिचिलौटा देवी पत्नी हंसराज यादव महनगर जिला आजमगढ़ ये दिनांक 17 फरवरी 2026 को रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल से शाहगंज जंक्शन की यात्रा ट्रेन साबरमती से यात्रा के दौरान बीच रास्ते से गायब हैं। इनके बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है। उम्र 50 वर्ष, रंग गेहुआ, मध्यम शरीर, लंबाई 5 फीट, चेहरा लंबा, बाल काला, पहनावा काली व ग्रे रंग की साड़ी, गुलाबी रंग का स्वेटर, चप्पल हरा पहना है। इनके बारे में किसी को कोई जानकारी प्राप्त हो तो निकट के थाने को या इस नंबर पर सूचित करें 9454401694। नंबर दोबारा सुन लीजिए 9454401694।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: इसी के साथ खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना अब समाप्त होती है। अगला कार्यक्रम होगा हमारे लखनऊ केंद्र से, तब तक प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
2: वो माजी की यादें, वो माजी के साये, वो माजी की यादें, वो माजी के साये, किरण बन के फूटे, घटा बन के छाए। जी हाँ सामईन अदब, आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपकी मेजबान रबा बंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ सुनहरी यादों के साथ। आज हम और आप जिस जरिए से एक दूसरे से राब्ते में हैं, एक दूसरे के रूबरू हैं, वो राब्ते का जो हमारा जरिया है यानी कि हमारा रेडियो, आज हम बात करेंगे उसी की तारीख की, उसी की तारीफ की और उसी की अहमियत की। जी आज हमारा मौजू है रेडियो के 90 सुनहरे साल। आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो हिंदुस्तान का एक ऐसा कौमी रेडियो नशरिया है जिसके ज़रिए सिर्फ हिंदुस्तानी ही आपस में नहीं एक दूसरे से जुड़े बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी नशरियात ने पूरे बरसग़ीर को एक दूसरे से जोड़ कर रखा। और ये लंबा सफ़र बहुत सी सुनहरी

0: भी यादें अपने साथ अपने दामन में समोता गया जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आज उन्हीं यादों को सजोकर हमने अपने स्टूडियो में इनकाद किया है एक गुफ्तगू का, और इस अहम गुफ्तगू के लिए हमने मदु किया है अपने मेहमानों को अपने स्टूडियो में। पहले हम आपसे उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब और जनाब परवेज खान साहब। हम समीम कल्ब से अपने दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में और मुबारकबाद देते हैं उन्हें भी कि वो इसी रेडियो के ज़रिए हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं। ये एक अहम तरीन जरिया है तमाम सामीन और तमाम शायकीन को एक दूसरे से जोड़ने का। मुजाहिद साहब, आप हमारे साथ हैं आज रेडियो की तारीख पर बात करने के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे सामीन को बताएं कि इसकी तारीख क्या है, इसकी इब्तिदा आकाशवाणी की, ऑल इंडिया रेडियो की कब से हुई और कैसे हुई।
1: बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रेडियो से मुंसलिक तमाम ही शख्सियात को और अपने तमाम सामईन को मुबारकबाद पेश करूं कि आज ये हमारे लिए खुशी का मौका है जब आकाशवाणी ने या ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी ज़िंदगी के 90 साल मुकम्मल किए हैं
0: जी।
1: और हम 90 साल से एक दूसरे के रابطے में हैं।
0: बिल्कुल।
1: रेडियो की इब्तिदा हुई तो मैं समझता हूँ कि इसके जो मौजिद हैं
0: जी,
1: इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी साहब को ये तो अंदाजा था कि वायरलेस सिस्टम के जरिए हम अपनी आवाज और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने इस रास्ते में बहुत कोशिश की, बहुत जुस्तजू की, बहुत लगन की। लेकिन शायद आज अगर वो जिंदा होते तो वो खुद भी हैरतजदा होते कि इस कोशिश के जरिए दुनिया में कितना बड़ा इनकलाब आ जाएगा।
0: जी बेशक।
1: रेडियो की जो इब्तिदा है, इन्वेंशन है, वो तो जाहिर
0: है
1: कि
0: मार्कोनी
1: साहब के सर जाता है ये सेरा। लेकिन हिंदुस्तान में जगदीश चंद्र बोस
0: जी
1: एक साइंटिस्ट गुजरे और उन्होंने पहले इंडियन इन्वेंटर हैं वो जिन्होंने हिंदुस्तान में इसके इब्तिदा की। इंडिया में जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने पहली मरतबा कोई प्रसारण किया। उस वक्त तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा कहा जाता था
0: जी हाँ।
1: और हिंदुस्तान में जहाँ चैनल्स की बात करें, फर्स्ट चैनल जो है एफएम चैनल वो 1977 में चेन्नई में हुआ शुरू
0: जी। उससे पहले 1936 में हम समझते हैं कि इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से मंसूब किया गया और 8 जून को उसकी पहली नशरियात ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। इसी मुनासिबत से हम आज 90 साल जश्न यहाँ मना रहे हैं और इसको आकाशवाणी का नाम दिया गया 1957 में, जबकि इस नाम की जो इब्तिदा थी जहन में वो मैसूर के कालिम थे एम वी गोपाल स्वामी, जिन्होंने 1936 में ही अपने जहन में इस नाम को पैदा किया था कि कभी इसका नाम आकाशवाणी रखा जाए, और वो कौमी सतह पर 1957 में इस नाम से राइज हुआ। परवेज साहब, आप क्या बताना चाहेंगे इस आकाशवाणी की मुनासिबत से, इसकी तारीख या इसकी तारीफ की मुनासिबत से? आप भी रेडियो से जुड़े हुए हैं, आपका इससे काफी पुराना रिश्ता है।
2: जी जी जी, 90 साल पूरे होने पर मैं रेडियो के बारे में और इस आकाशवाणी के बारे में ये कहना चाहूँगा और एक पुरानी बात भी आपको सुनाना चाहूँगा।
0: जी बिल्कुल।
2: कि हमारा ताल्लुक गांव से है
0: जी,
2: और रामपुर जिला में वो गांव पड़ता है, लिहाजा 1975 या 1976 की बात है
0: जी,
2: तो उस वक्त उस गांव में एक रेडियो जो जॉली नाम से आया करता था
0: जी, जी,
2: तो
0: जी।
2: मेरे वालिद साहब ने वो खरीदा था और उसकी बॉडी सनमाइका और लकड़ी में हुआ करती थी, तो वो जब बैठक पर बजा करता था वो रेडियो तो पूरे गांव के लोग सुनने आया करते
0: सुनने
2: थे और वो उस वक्त एक उनका मनोरंजन का बेहतरीन साधन था।
0: बेशक।
2: उस रेडियो के जरिए तमाम रंग के प्रोग्राम, तमाम रंग की जानकारियां, और ऐसे प्रोग्राम आया करते थे कि लोग फरमाइश किया करते थे अपने गानों की कि हमें ये गाना सुनना है, वो गाना सुनना है, तो जब रेडियो पे नाम आया करता था कि भाई फला जगह से ये शख्स इस
0: फरमाइश
2: है उनकी, तो वो बड़ा खुश हुआ करते थे
0: जी।
2: तो मैं तो ये समझता हूँ।

0: के इस दौर में जो
1: जी
0: रेडियो गांवों में बहुत या देहाती क्षेत्रों में या अक्सर आप देख रहे हैं कि कुछ
1: जी
0: कमी आई है, लेकिन वहीं पर मोबाइल के जरिए
1: जी
0: और एफएम के जरिए उसको बड़ा लोग इस्तेमाल करते हैं और वो दूर दूर तक सुना जाता है, मैं तो ये
1: बिल्कुल
0: मान के चलता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सब इस वक्त के क्या आदादोशुमार हैं, कितने ऐसे स्टेशंस होंगे जो अपनी नशियात यहाँ दे रहे हैं?
2: बहुत तरक्की की रेडियो ने और उसके मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स कायम किए गए,
1: जी
2: जिनकी तादाद 591 है इस वक्त। 591 ये स्टेशन हैं जो अपनी नशियात देते हैं, और ये नशियात 23 जबानों में और 146 बोलियों में नश्र की जाती हैं।
1: ये एक बड़ी
2: इस
1: कामयाबी
2: बड़ी
1: है
2: कामयाबी
1: आकाशवाणी
2: है
1: की।
2: और हिंदुस्तान के 98%
1: जी
2: लोगों तक रसाई है
1: जी हाँ जी हाँ
2: आकाशवाणी की, तो जरूर ये एक इनकलाबी कामयाबी है और
1: बिल्कुल।
2: बड़ा कारनामा है।
1: देखिए, हम समझते हैं कि शायद मैं खुद को तो उसी जुमरे में रखूंगी कि हम लोगों की जो नस्ल थी उसकी तरबियत में भी रेडियो का बड़ा हाथ
0: हाँ,
1: रहा
0: बहुत
1: है।
0: बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक की
2: जी
0: बात
1: जी
0: नहीं। हाँ
2: जी मैंने ये महसूस किया है। मैं एक शेर की जबान में अपनी बात बताना चाहूँगा कि मुझमें हर दौर की तारीख नेहा है लोगो, मेरे किस्से से कई किस्से आया होते हैं।
1: बहुत अच्छा।
2: बात यह है कि रेडियो ने समाजी जिंदगी में, इंसानी जिंदगी के हर शोबे में अपनी रसाई हासिल की।
1: बेशक
2: वो कोई ऐसा शोबा है ही नहीं हमारी जिंदगी का जिसमें रेडियो ने कहीं ना कहीं अपनी खिदमात ना पेश की हों और
1: बिल्कुल
2: हमें मालूमात ना फराहम की हों, या हमारे लिए, जैसे अभी परवेज भाई ने जिक्र किया कि गांव में बैठते थे, चौपाल में बैठते थे और इंतज़ार रहता था प्रोग्राम का और अपने अपने मतलब के। तो बात मैं गांव से ही अगर करूं कि आज जो साइंस ने नई नई तरक्कियां ज़राअत के शोबे में की हैं,
1: बिल्कुल
2: उसमें मालूमात फराहम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया रेडियो होता था जो
1: बिल्कुल।
2: किसानों को बताता था आप कौन सी खाद आज दें, कौन सी फसल कौन से मौसम में
1: और ये खिदमत
2: पैदा
1: आज तक
2: करें,
1: आकाशवाणी
2: और
1: कर
2: वो
1: रहा
2: खिदमत
1: है
2: आज तक अंजाम
1: मुख्तलिफ
2: देगा।
1: प्रोग्रामों के
2: इसी
1: जरिए।
2: तरीके से साइंस का शोबा, इसी तरीके से तिब्बी शोबा,
1: जी
2: इसी तरीके से
1: कानूनी
2: मनोरंजन, हाँ कानूनी शोबा, फिर मनोरंजन के लिए आकाशवाणी के पास कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें हम देखते हैं कि
1: नई और
2: साहब,
1: पुरानी फिल्मों के गीत हैं।
2: हाँ अगर बात आकाशवाणी की हो रही है तो बिना की गीतमाला के, जिक्र के बगैर
1: बिना का
2: मुकम्मल हो ही
1: गीतमाला
2: नहीं सकता
1: जी, अमीन
2: बिना
1: सियानी
2: का
1: साहब
2: जी।
1: का नाम उनके साथ
2: हाँ
1: हमेशा के लिए अमर है।
2: कितने ही एंकर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को दर्ज करा लिया तारीख में और उनका नाम हमेशा हमेशा रहेगा जब तक कि
1: बेशक
2: आकाशवाणी का नाम रहेगा। उनमें एक नाम अमीन सयानी साहब का
1: अमीन
2: भी,
1: सियानी साहब का
2: ऐसे
1: है।
2: ही अज़रा कुरैशी एक नाम है
1: जी
2: जो उर्दू सर्विस में मशहूर
1: जी हाँ
2: एंकर
1: जी
2: थीं और उनकी जो आवाज़ थी वो एक तरह से ऐसा लगता था कि जादू सा कर रही हैं समातों
1: बिल्कुल।
2: पर। तो
1: अमीन
2: वो
1: सयानी साहब का तो जब नशियात शुरू होती थी रेडियो सैलून से और वो कहते थे भाइयों और बहनों अपनी मखसूस आवाज में, तो उसकी एक कशिश जो थी वो तमाम लोगों को अपनी जानिब
0: बिल्कुल
1: खींच
0: सही बात
1: लेती
0: है,
1: थी।
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, इसी तरह से कुछ और मोतबर नाम जिन्होंने अपनी आवाजों के जरिए, अपनी खिदमात के जरिए आकाशवाणी में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया, जैसे जुबैर रिजवी साहब, मोहम्मद अली मौज साहब, मनदीप कौर, सुरेंद्र राजेश्वरी, असीम सक्सेना, जिन्होंने खासकर हम कहें हमारे रामपुर रेडियो मरकज से अपनी मखसूस आवाजों ऐसी पहचान अपनी खिदमात की दी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। कलियां प्रोग्राम के चीकू भैया, रजनी दीदी बच्चों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे। उनके लिए तो ये कहना बजा होगा कि हम भूल सके हैं ना तुझे भूल सकेंगे, तू याद रहेगा हमें हाँ याद रहेगा। परवेज साहब, आपके भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रहे होंगे जो आपने पसंद किए होंगे या आपके जमाने में आपके बड़ों ने आपको खुसूसन सुनवाए होंगे और उससे आप कहीं ना कहीं मुस्तफीद भी हुए होंगे।
0: देखिए डॉक्टर साहब ने जो अभी बात कही
1: जी
0: कि आकाशवाणी जो 90 साल गुजर गए उस वक़्त टीवी वगैरह नहीं थे, मोबाइल
1: जी
0: नहीं थे और इतने अखबारात भी नहीं थे, लेकिन आकाशवाणी के जरिए तमाम रंग की जानकारियां, तमाम रंग के प्रोग्राम जिसमें युवा वाणी भी हो, कृषि जगत भी हो, कानूनी जानकारी भी हो और तमाम ऐसे अवेयरनेस, बच्चों के
1: जी हाँ
0: प्रोग्राम हुआ
1: जी
0: करते
1: जी
0: थे,
1: जी
0: उर्दू
1: जी
0: प्रोग्राम हुआ करते थे, शेर शायरी का माहौल हुआ करता था। तो ये जो तहजीब और अदब हमने उस वक्त सीखा है वो रेडियो से सीखा है,
1: बिल्कुल,
0: और अब तो चूंकि बहुत चीजें आ गई हैं उससे लोग सीख रहे हैं, लेकिन रेडियो की

0: अपनी जगह एक अहमियत है।
1: सबसे बड़ी चीज ये कि रेडियो से जो चीज भी नश्र होती है वो बिल्कुल सही होती है और उसमें किसी तरह का मिलावट का कोई अंदेशा नहीं।
0: देखिए देखिए, आजकल जैसे भ्रामक समाचार होते हैं
1: जी,
0: जो दूसरों पे इतना यकीन नहीं किया जा सकता,
1: सोशल मीडिया के जरिए से जो फैलाए जा रहे
0: लेकिन रेडियो
1: हैं।
0: पे आज भी यकीन है
1: जी हाँ
0: कि भाई
1: बिल्कुल
0: ये रेडियो में आया है, ये
1: जी,
0: हमने सुना है, ये खबर आई है, तो
1: मुस्तनद होती थी
0: ये
1: वो
0: जी जी
1: चीज।
0: बिल्कुल वो आज भी है ऐसा।
1: जी हाँ, इसी तरह डॉक्टर साहब हमारी जुबान उर्दू, इसके फरोग में भी रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। रेडियो से नश्र होने वाली उर्दू सर्विस
2: जी
1: जिसके तहत उर्दू के अफसाने, उर्दू के ड्रामे और उर्दू
2: उर्दू
1: की
2: शायरी
1: शायरी, ये तमाम चीजें इस तरह से नश्र होना शुरू हुई कि उस वक्त उर्दू जुबान भी पूरे बरसगीर में एक राब्ते की जुबान थी और
2: जी
1: पसंदीदा
2: जी
1: जुबान थी। तो
2: बेशक
1: ऐसे में उस उर्दू सर्विस ने जो अपना अहम रोल अदा किया उर्दू को फरोग देने में और उर्दू के तमाम असनाफ को सब तक पहुंचाने में, वो
2: जी
1: भी
2: जी
1: उसका एक बड़ा कारनामा है।
2: बड़ा कारनामा है और उर्दू सर्विस ने बहुत मकबूलियत हासिल की और वो घर घर की आवाज़ थी, और घर घर की नहीं, मर्दो जन की आवाज़ थी,
1: जी
2: बच्चों की आवाज़ थी, सबके
1: बिल्कुल
2: मतलब के प्रोग्राम वहाँ मौजूद थे।
1: जी हाँ, ये तो जाहिर है कि अगर हम बात करें पूरे बरसगीर की या पूरे वर्ल्ड की, तो बहुत सारी उर्दू सर्विसेज थी, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी लंदन की उर्दू सर्विस,
2: जी जी
1: और उसके अलावा भी दीगर थी। लेकिन हम फिर वापस लौटते हैं अपने आकाशवाणी की ही तरफ। तो हमारे आकाशवाणी ने ही जो प्रोग्राम अब तक दिए, जैसा भी हमने जिक्र किया बिनाका गीतमाला का, इसी तरह से एक प्रोग्राम आया करता था हवा महल,
2: जी जी
1: उसमें क्लासिकल कहानियों और ड्रामों पर मबनी ये हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत दिखाई जाती थी, सुनाई जाती थी। इसी तरह एक आता था प्रोग्राम छाया गीत, जिसमें फरमाइशी नगमे हुआ करते थे। युवानी जो बहुत पुराना प्रोग्राम है और आज
2: बहुत,
1: तक
2: बहुत मकबूल प्रोग्राम
1: मकबूल है और आज तक वो उसी तो खूबसूरती के साथ चल रहा है। विविध भारती
2: जी
1: के प्रोग्राम, भूले बिसरे गीत जिसमें पुरानी फिल्मों से लिए गए वो गीत जो आमतौर पर खासकर हमारी नई नस्ल नहीं जानती, नहीं समझती उन चीजों को, लेकिन उसकी अहमियत समझते हुए इस तरह के प्रोग्राम भी रखे गए। बाल मंडल, बाल सभा, बच्चों के लिए प्रोग्राम
2: जी,
1: या कलियां प्रोग्राम जो रामपुर से ही नश्र होता है। इसके अलावा कृषि से मुतालिक बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे अभी परवेज साहब ने जिक्र किया
2: जी,
1: उससे मुतालिक बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। और सबसे खास चीज आकाशवाणी की, यहां से नश्र होने वाली खबरें, चाहे वो उर्दू खबरें हों या हिंदी समाचार हो या इंग्लिश न्यूज हो।
2: मुझे खबरें सुनने का शौक बचपन से रहा, शायद मेरे ताया से मुझे मिला। वो एक खास टाइम पर जब खबरों का वक्त होता था तो हम लोगों से कहते थे रेडियो ऑन करो,
1: जी हाँ,
2: वो खबरें सुनते थे। तो उस जमाने में मुझे आज भी नाम याद है, वो कमेंट खबरें पेश करने का जो अंदाज है ना, बाज एंकर्स ने ऐसी छाप छोड़ी है
1: बिल्कुल,
2: पर
1: बिल्कुल,
2: कि वो नहीं मिटती
1: मुनफरिद अंदाज।
2: तो उसमें हिंदी की खबरों में देवकी नंदन पांडे,
1: देवकी नंदन पांडे
2: इतना मशहूर नाम है कि उनकी जो आवाज थी इतनी भारी भरकम आवाज, और उससे लगता था कि ये जो कुछ दे रहे हैं वो मालूमात का एक समंदर हमें बाखबर कर रहे हैं पूरी तरीके से। इसी तरह से अंग्रेजी में अनुपम गुलाटी और नरोत्तम पुरी के जो ये और खबरें होती थी। तो शायद एक शोभा भी छूट रहा है हमसे, खेल का शोभे में भी आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मुझे तो खैर क्रिकेट का शौक था, लेकिन मैंने जसदेव सिंह को कमेंट्री करते हुए सुना है बारहा, वो क्रिकेट ही नहीं हॉकी में भी और दूसरे खेलों में भी महारत रखते थे, माहिर वो कमेंट्रेटर थे।
1: उन कमेंट्रियों की भी ये खसूसियत ये होती थी कि जिस वक्त वो कमेंट्री आती थी तो आंखों के सामने पूरा फील्ड,
2: हाँ, मंजर कशी
1: बहुत बेहतरीन
2: ऐसा लगता था,
1: ये
2: सब हम देख रहे हैं जो।
1: जी परवेज साहब, आपके कौन से पसंदीदा प्रोग्राम रहे जो आपको अब तक याद हो और आप फिर उसे सुनना चाहें?
0: भाई हम तो वो युवा वाणी सुना करते थे, उस वक्त युवा थे तो बहुत सी जानकारियां मिला करती थी
1: बिल्कुल,
0: और अब तो उम्र के उस स्टेज पर हैं कि तमाम रंग की चीजें आकाशवाणी से जो आती हैं तो सुनते हैं, लेकिन उस वक्त शौक जो था वो युवा वाणी का था।
1: तो हमारे ये जो 90 साल गुजरे, आज के मंजरनामा है उसमें आपको क्या लगता है कि नई नस्ल कितना इस रेडियो को पसंद कर रही है या कितना इससे जुड़ रही है और क्या इसका मुस्तकबिल हो सकता है?
2: वो है ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी
1: बड़ी
2: जरखेज है साकी। बात यह है कि रेडियो ने अपनी तरक्की की, लेकिन हमारा सेटबैक ये है कि नई नस्ल के पास अब वक्त नहीं है कि हम रेडियो

सान में ठठाई के

असमझे ना मूर्ख मानो विधि का रहस्य हो अरे काला कबीर चेता अरे सबके

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार थे राधे श्याम सोटा वाले और साथी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

का पहला गीत लिया है टू स्टेट्स पिक्चर से, जिसको गाया है शाहिद माल्या और आकृति कक्कड़ ने। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है थ्री इडियट्स पिक्चर से, जिसको गाया है सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान ने। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे, संगीतकार हैं शांतनु मोहतरे।

अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म अंधाधुन से, जिसको गाया है अमित त्रिवेदी ने। गीतकार हैं जयदीप सहानी और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

अगला गाना आप सुन रहे हैं फिल्म अंतिम से, जिसको गाया है जुबीन नौटियाल ने। गीतकार हैं शब्बीर अहमद और संगीतकार रवि बासरूर।

अगला गाना आप सुन रहे हैं फिल्म अंग्रेजी मीडियम से, जिसको गाया है विशाल दादलानी और सचिन जिगर ने। गीतकार हैं जिगर सरैया बासाथी और संगीतकार सचिन जिगर।

0: कार्यक्रम में अगला गाना आइए सुनते हैं बागी पिक्चर से, जिसको गाया है विशाल शेखर, के शान और तुलसी कुमार ने। गीतकार हैं पंछी जलोनवी और संगीतकार विशाल शेखर।
1: Authentic, original, and better than ours.

अभी आपने ये गीत सुना बच्चन पांडे फिल्म से, जिसको गाया था अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। गीतकार थे कुमार और संगीतकार अमाल मलिक। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म बधाई हो से, जिसको गाया है गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने। गीतकार हैं मेलोड और संगीतकार तनिष्क बागची।

अगला गाना सुनते हैं फिल्म भूल भुलैया से, जिसको गाया है नीरज श्रीधर ने। गीतकार हैं समीर के और संगीतकार प्रीतम और तनिष्क बागची।

ये गाना अभी आपने सुना था फिल्म अय्यारी से, जिसको गाया था सुनिधि चौहान ने। गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीतकार रोचक कोहली।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत छिछोरे पिक्चर से, जिसको गाया है अरिजीत सिंह ने, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दे दे प्यार दे से, जिसको गाया है गैरी संधू और नेहा कक्कड़ ने। गीतकार और संगीतकार इसके हैं तनिष्क बागची।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं फिल्म धड़क से ये गीत, जिसको गाया है अजय अतुल ने। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अजय अतुल।

0: राधा चली
1: ओ चली ओ चली
0: गोकुल की राधा चली
1: ओ चली चली चली
0: गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार में जमुना।
2: कार्यक्रम का आखिरी गीत लिया है ड्रीम गर्ल पिक्चर से, जिसको गाया है मीट ब्रदर्स और अमित ने। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार मीट ब्रदर्स और डीजे हर्षित।

0: इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव सोटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: हमने तो शराकत से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूंगा कि जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारी शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच, डीआरएम और वेब्स ओटीटी पर एक साथ उपलब्ध हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ ये ताकीद और आपसे गुजारिश

कि गर्मी के तेज मौसम में बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरत हो, क्योंकि मौसम अभी बहुत प्रतिकूल चल रहा है। लेकिन हमारे कार्यक्रम का मौसम ठीक ठाक है, क्योंकि अभी फिल्मों के नाम हमने बताए नहीं और बड़ी तादाद में आपके संदेश आ गए। लेकिन आपको बता दें कि फिल्मों के नाम हम आपको शुरुआत में ही बता रहे हैं, और उन फिल्मों से जो फरमाइशें आएंगी यानी जिसमें फिल्म का नाम लिखा रहेगा, वो फरमाइशें हम लोग जरूर पूरी करते हैं। आज का ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है, आप जानते हैं। 7905519981 7905519981 ये इस प्रोग्राम का व्हाट्सएप नंबर है। आज की फिल्में हैं आए दिन बहार के, महबूब की मेहंदी, फकीरा, परवरिश, मौसम और प्रेम बंधन। आए दिन बहार के, महबूब की मेहंदी, फकीरा, परवरिश, मौसम और प्रेम बंधन। और हमारा आपका ये जो प्रेम बंधन है ये यूं ही चलता रहे, यही उम्मीद, और ये तभी पूरा होगा जब आप पूरे प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ बने रहेंगे, एक बार ही संदेश भेजेंगे और एक संदेश में तीन चार नाम एक ही जगह के श्रोताओं के लिखेंगे। 11:30 बजे तक संदेश भेज दें, क्योंकि बड़ी तादाद में संदेश आते हैं और बाद में आए हुए संदेश नहीं शामिल हो पाते। और हमने जैसा आपको कहा है बार बार कि एक बार ही संदेश भेजें और फिर इंतजार करें, क्योंकि जैसे ही आप 8, 10, 12 बार संदेश भेज देते हैं आपका संदेश और पीछे यानी ऊपर होता चला जाता है। आए दिन बहार के, महबूब की मेहंदी, फकीरा, परवरिश, मौसम और प्रेम बंधन। मौसम बहुत तल्ख है, गर्म है, और ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर बहुत जरूरी हो तो सिर को ढककर पूरे बांह के कपड़े पहनकर बाहर निकलें और पानी जरूर पर्याप्त मात्रा में पीकर चलें, तो आप स्वस्थ सुरक्षित रहें और प्रोग्राम का आनंद लें, यही हमारी चाहत है। आइए कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत के साथ। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके लिए फरमाइश भेजी हुई है। आपको बता दें कि अगर आपके पास कई जगहों के कई श्रोताओं के नाम हो तो एक फरमाइश जब पूरी हो जाए तब दोबारा उस नाम से आप संदेश भेज सकते हैं। कार्यक्रम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म है आए दिन बहार के।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कथा संगीत और फरमाइशें आप सबकी आई हैं। लाल माता सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान के हमारे श्रोता हैं हर्षिता रमेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा और मनोहर भाई बागरी, साथ में प्रभुलाल बागरी।

आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम गहमर पकड़ीतर हनुमान मंदिर चांदनी चौक गाजीपुर के श्रोता हैं त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल। ये फरमाइश है जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल की। हमारे श्रोता है छत्तीसगढ़ पलारी से आपने संदेश भेजा है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन और मेघा मस्किन। उम्मीद है तुलसी जी अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो दोबारा संदेश नहीं भेजेंगे, क्योंकि प्रायः ये होता है कि आपका नाम शामिल होने के बाद आप शिकायती संदेश भी भेजते हैं, तो आज देखना है क्या होता है। हनुमानगढ़ राजस्थान के श्रोता हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। इसी गीत को सुनना चाहा सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले ने। ये फरमाइश है गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराहू और देवंती जायसवाल की। दतरेंगी भाटापारा से हमें सुन रहे हैं हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की फरमाइश जनकपुरी सहारनपुर से आई है। घोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। पद्मा टॉकीज नेपानगर से यह संदेश सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह और नीति शाह का आया हुआ है। बजट डीहा धरहरा से हैं, हालांकि उन्होंने बजट डीहा थोड़ा सा स्पेलिंग को ध्यान देना होगा।

करता है। आप हैं अनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी और सलीम आजाद अंसारी। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहनी की फरमाइश चोहलदा बागपत से आई हुई है। पदमपुर गंगानगर राजस्थान के हमारे श्रोता हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ के श्रोता है। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज नूर महल महसौल सीतामढ़ी से हमें सुन रहे हैं। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और माधुरी किरण। भेड़ाघाट रोड जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, कृष्ण सिंह और गुड़िया वेदा सिंह। मजनू का टीला दिल्ली के हमारे श्रोता है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और उनके दोस्त रईस खान, साविया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान फूले नगर अम्बिवली मुंबई महाराष्ट्र से हैं। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म महबूब की मेहंदी से, बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश, लता मंगेशकर की आवाज़।

ये जो कुछ आवाजें आपको आखिर में सुनाई दी, हालांकि अभी हमारे कंप्यूटर के हिसाब से 15-16 सेकंड ये गीत और भी था, लेकिन ये उस दौर के गाने ट्रांसफर किए हुए हैं जब LP यानी रिकॉर्ड से बजा करके उन्हें हम लोगों ने फोल्डर में डाला हुआ है, तो वो रह गया है और रह गई हैं आपकी फरमाइशें जो इस गाने के लिए आई हुई हैं। और वो जरूरी बात भी दोहरा दें आपको फिल्मों के नाम के साथ साथ कि इस तेज गर्मी में अपना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बहुत जरूरी हो तभी इस तेज तापमान में धूप में बाहर निकलें, वरना घर के भीतर ही रहें। सावधान रहें, सतर्क और सुरक्षित रहें और रब आपके नाम इस फिल्म के गीत की फरमाइशें जिन्होंने की। फिल्म थी महबूब की मेहंदी, लता मंगेशकर की आवाज। गावना थाना पंजाब से फरमाइश हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की आई हुई है। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल और मीनाक्षी हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश और राजपाल पंकज मुरादाबाद से। आप हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन और प्रतीक्षा चंदन, कुम्हार गली कोलगांव से। महाराष्ट्र से कुमकुम, आरती, विद्या और वैष्णवी, शुक्रिया आपका। दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं मेरठ से। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मल्लू अंसारी, आप सभी अहमदनगर बजरडीहा के हमारे श्रोता हैं। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज और ऋषि शिंदे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता है रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम और सतीश। ये फरमाइश है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक की। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। पंचकुला चंडीगढ़ के श्रोता है राहुल खुराना, रजिता खुराना, रिधान और तुलसी मस्कीन, आपने अपना नाम इसमें भी भेज दिया है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से है नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से और हर्षिता लाम से। धर्मवीर संदीप मक्कड़, मनोहर लाल गांधी, बुट्टी राम हांडा और जोगिंदर पाल मक्कड़ हमें सुन रहे हैं पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के श्रोता है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा के श्रोता है राजेश सिंह, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय सेन। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना हमें सुन रहे हैं लदावली मुरादाबाद से, बहुत शुक्रिया। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की फरमाइश है। रामगढ़ कैंट के हमारे श्रोता है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब।

वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, सोनाली राय, अनु राय, साइना राय और ये नाम आर्मी राय लिखा है। तो जो शुरुआत वाला वर्षा नाम था वो कहां से है? बहरहाल मुबारकपुर उचित की आजमगढ़ के हमारे श्रोता हैं दिलशाद हुसैन और फातिमा सुगरा।

सिंगर से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी और कृतिका, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी की फरमाइश मुंगीसापुर से आई है। दादरी गेट भिवानी से हमें सुन रहे हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण और कपिल मेहरा। और अब एक गीत, बहुत पुराना, पुराने दौर का, बहुत सारी यादों को समेटे हुए, फिल्म है फकीरा। बहुत सारे श्रोताओं ने इसे सुनना चाहा है, पहले गीत सुनते हैं फिर उनके नाम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन के।

जी हाँ, लेकिन ये पुरानी कहानियाँ खास तौर से हम पुराने लोगों के साथ तो हमेशा रहती हैं, और एक वक्त आता है जब हर पीढ़ी इन्हीं पुराने गीतों की ओर लौट कर आती है। इसी उम्मीद के साथ इस गाने को पसंद किया हमारे श्रोता परवेज अहमद ने शुक्लपुरा वाराणसी से। ये फरमाइश है नीलेश कुमार की नई दिल्ली से। संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, प्रगति पांडे, प्रगति तिवारी हो गई हैं, कृष्णा तिवारी, स्वाति मिश्रा, शुभम मिश्रा, मान्यता मिश्रा, हर्षल मिश्रा, आप सभी हैं चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी के हमारे श्रोता। वाडी खाम गांव से है अनंता वाढे, रामेश्वर वाढे, शुभम, साक्षी और खुशी। ये संदेश है नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद का, श्रीरामपुर फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र से। विशाल मिश्रा है बंधवा बाजार माधोपुर इमिलिया जौनपुर से। फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण हयात कॉलोनी अररिया से हैं। आपका नाम शामिल हुआ है, एक बार ही नाम भेजा करें। धनराज बैरागी और सीमा बैरागी किट्टू हमें सुन रहे हैं भीलखेड़ी सारंगपुर राजगढ़ से। गुवाहाटी आसाम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या का स्वागत है। राजेंद्र तिवारी, रमाशंकर गुप्ता, यश गुप्ता, अंश गुप्ता, शिवम गुप्ता हैं ग्राम बगही से। कलाना भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से हमें सुन रहे हैं विक्रम कणवासरा, सचिन कणवासरा, सतीश कणवासरा और योगेश कणवासरा। जलालाबाद वेस्ट के श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया देशानी और निमिता हुजा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोता हैं विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, विशाल और विवेक। आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी की फरमाइश वाराणसी से आई हुई है। मुजफ्फरपुर बिहार के श्रोता हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। सेक्टर 8 भिलाई नगर से हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चिन्नू आसमा और दीपक श्याम कुंवर। शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे हिंगोली महाराष्ट्र से। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और परिवार के सदस्य। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और तुषार देव तामुरिया हमें सुन रहे हैं डोंडी लोहारा बालोद से, शुक्रिया आपका। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि और ओशिका। ये फरमाइश है अमितेश कुमार तिवारी की करनई बलिया से। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध और अंकित कांगड़ा। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा आप हैं हमारे श्रोता खरगोन सनावत के। शादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। श्रोताओं वक्त है 11:32 और 8 सेकेंड का। आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। बाकी फिल्में हैं परवरिश, मौसम और प्रेम बंधन। फरमाइशें आपने भेज दी हैं तो अब न भेजें और इंतजार करें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। अब पेश है आप सबकी ही फरमाइश पर अगला गीत परवरिश फिल्म से, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

वेव जो चल रहा है उससे बचाव बहुत जरूरी है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और हल्के और ढीले सूती कपड़े पहने, सिर को ढकें, चश्मा और टोपी का प्रयोग करें और साथ ही हल्के भोजन करें। अधिक गर्मी महसूस हो तो छांव में रहें, आराम करें। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। और अब जो गीत आपने सुना फिल्म परवरिश से मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, उसके लिए फरमाइशें आप सबकी आई हैं। मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवीएम जैन। मारहरा दरवाजा एटा के श्रोता है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी और सुहेल हसन अब्बासी। बबरी बाजार चंदौली से विजय, सरोज सुंदर और सुमन जायसवाल। दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा हमें सुन रहे हैं चौटाला हरियाणा से। सतवीर सिंह बीजारणिया, देवेंद्र राजपाल और अभिषेक की फरमाइश आई है सिरसा हरियाणा से, गांव का नाम है खारिया ढाणी। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा है खरगोन सनावस से, हालांकि आपकी फरमाइश दोबारा शामिल हो रही है। देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा दीपाली और देवेन हैं बड़ा बाम्बो सुपाई गांव से, ये हमें लग रहा है कि जमशेदपुर झारखंड में ये पड़ता है। निम्नाबाद जिंद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। ये गांगीवाड़ा है या वाड़ा है छिंदवाड़ा से, राजदीप, रमनदीप परिहार, अर्पना परिहार और सुधा परिहार। हिंदी में लिखे हैं या फिर थोड़ा सा स्पेलिंग देख लें। बोरखेड़ा पित्रामल के श्रोता हैं विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत और चेतन नाहटा, कमल साहनी, पिंकी साहनी और डॉक्टर अफसल मलिक नागपुर महाराष्ट्र से हैं। चोचकपुर बाजार गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं राम सकल चौधरी। भीमपुर भदोही से हैं महेंद्र कुमार, सरिता, सानवी, आशीष, पूजा, सतीश और नीतू। शगुफ्ता प्रवीण, नाजिया प्रवीण और फौजिया प्रवीण हैं अररिया बिहार से। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर डाबकी रोड अकोला के हमारे श्रोता हैं। माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास हैं हरिभाव बिडवे के नाम के साथ, अहिल्यानगर निवासा खुपटी महाराष्ट्र से। ये जरूर आप सभी से कहेंगे कि असली नाम लिखें, नाम के साथ संबोधन न जोड़ें, कोई और बात न लिखें, नाम जो सही सही साफ साफ है वो लिखें ताकि सहूलियत हो। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी और फरदीन अब्बासी की फरमाइश ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी से आई हुई है। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी और आसना अंसारी हैं कुरावली जैन मंदिर वाली गली के श्रोता। हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक और प्राची की फरमाइश बेरडी मध्य प्रदेश से। अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा के श्रोता हैं। अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम कुआत बिहार से। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड के श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और आलिया, साथ में अयान, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग हमें सुन रहे हैं बटिंडा रोड मंडी डबवाली से। और अब फिल्म मौसम का गीत भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल मदन मोहन का है संगीत।

जी हाँ श्रोताओं, और साथ ही आपके लिए ये गुजारिश करें कि जो हीट वेव है, यानी बहुत सारे इलाकों में, हालांकि हमारा देश बड़ा ही विविधता से भरा हुआ है और बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, लेकिन अधिकतर जो है गर्मी का मौसम और हीट

जी हाँ, फिल्म मौसम का ये गीत जिसमें मौसमों का जिक्र था, लेकिन अभी जो मौसम है वो बहुत तेज गर्मी का है और अपनी सेहत का ख्याल रखना आपका हम सबकी जिम्मेदारी है।

0: फिर वही फुर्सत के रात दिन।
1: जी हाँ, और अब फुर्सत से आप तमाम सुनने वालों के नाम जिन्होंने इस गीत को सुनना चाहा। भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजें थीं। फिल्म मौसम पर गीत गुलजार का लिखा हुआ था और मदन मोहन का संगीत। सुनना चाहा हमारे श्रोता पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक और अनिल शर्मा। रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। सिद्धार्थनगर नांदेड़ से आरती, छोटी बबली, रूपाल, वंदना धुले और सरुबाई धुले। नेवादा मुबारकपुर आजमगढ़ के श्रोता है नाहिद अंसारी, रूमा अंसारी और माजिद अंसारी। जाखोद से हैं शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल और योगेश कुमार। ये फरमाइश है प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक, पीहू कुमार, बिमल और उनके परिवार के सदस्यों की, फारबिसगंज बिहार से। श्रोता क्लबों के नाम हम लोग नहीं लेते हैं तो हमारे यहाँ आप न भेजा करें। ग्राम नागर कोहरा राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू। सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू और राजू मिगलानी कृष्णा कॉलोनी हासी से हैं। सुरेश पांडरे, सारिका आरवी की फरमाइश आई है, एसआरपी हिंगोली महाराष्ट्र से। मोसी अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी कोटवा वाराणसी के श्रोता हैं। रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इमरान खान है हनुमानगढ़ राजस्थान से। राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवड़े, ज्योति नरवड़े, आकांक्षा नरवड़े और आकाश कुमार। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग और टोनी दीवान। जवाहर नगर दुर्ग के श्रोता हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना और अश्विनी। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान है शाहजहांपुर से। फरमान सलमान, इरफान और मोहम्मद इसरार की फरमाइश दूल्हापुर से आई हुई है। आप हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती, आप सभी हैं लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से। राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर और चेतन मनवर शाहूनगर यवतमाल के श्रोता हैं।

गंजू डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी और मोहम्मद कैफ, राजेश कुमार वर्मा और प्रीति वर्मा हैं मऊनाथ भंजन के श्रोता। जोकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से हैं सरफराज आलम, मनोहर लाल गांधी और डॉक्टर प्रकाश गोगिया। आर अश्विन शोभनाथ अवस्थी और आपके मित्र हैं शिवराजपुर चुनार से। हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें सुन रहे हैं। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। शिवराम प्रजापति, शांतनु प्रजापति, रिया प्रजापति सिकरारा बाजार जौनपुर से। सावतपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन। और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म है प्रेम बंधन, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत।

इस प्रोग्राम के आखिरी गीत के लिए फरमाइश भेजी हमारे बेहद नियमित श्रोता अशोक विहार कॉलोनी फेज दो पहड़िया वाराणसी से अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड और अंकुश गुप्ता गौंड, पूजा गुप्ता गौंड के नाम के साथ। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि और आकाश प्रजापति हैं कुरौता वाराणसी की श्रोता। इमरती यादव हमें सुन रही हैं ग्राम बरठी सकलडीहा चंदौली से। कोठा गोदाम तेलंगाना के श्रोता हैं राजेश खन्ना, अनिता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना और अमित खन्ना।

दत्तरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा की फरमाइश, बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहा बठेना पाटन दुर्ग से। अभिजीत गोहाणकर, राही सरिता गोहाणकर हैं मेहरनगर उमरखेड़ से। बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और कुंदीबाई बागरी। भास्कर दुबे की फरमाइश आई है चोचकपुर गाजीपुर से। चौरादा बाजार नवापारा से हैं नंद कुमार ठाकुर और प्रमिला ठाकुर। बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, नंदकिशोर घटे, बीड शहर महाराष्ट्र से।

आशीष कुमार की फरमाइश महरेओ जौनपुर से आई है। जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। नेहरू चौक पैठण के श्रोता हैं डॉक्टर सुरेश जाधव और अनीता जाधव। ये फरमाइश है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और आफरीन कौसर की। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, शेर अली, जाकिर हुसैन कोटवा वाराणसी के श्रोता है। मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही और बेगम रुखसार। विनोदपुरी वीपी, रंजू और अशोकपुरी हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा और विशाल खेड़ा। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और एजाद कुरैशी की फरमाइश आई है पटियाली रोड से। जबलपुर मध्य प्रदेश से हमें सुन रहे हैं रितु सिंह, संकल्प, प्रीति सिंह और उनके परिवार के सदस्य। सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। मोहम्मद सईद अबासी, गत परवीन अबासी और शहनवाज अब्बासी हैं ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी के श्रोता। दुबिहाने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा के श्रोता है। कोटवा कपिल धारा सराय मोहाना वाराणसी से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री ओमना, सरंग शिवांग, रोली अदिति और निर्मला त्रिपाठी। जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता पांडे, सीता मुनि और जयराम बिंद है नगर पंचायत दिनारा से। मोहम्मद बुरहानुद्दीन और फैजान लल्ला तेलंगाना भोंगीर से। मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन और ख्वाजा फसीउद्दीन है वारंगल से। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा फगवाड़ा पंजाब से हमें सुन रहे हैं। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ के श्रोता है जिनकी फरमाइश आई राष्ट्रपाल गज भी और राधिका गज भी एक ही। अनिल त्रिलोकी, प्रियांशु राघव, हार्दिक पांडे हैं गुरसुंडी मिर्जापुर से। सुधाकर राजे जाधव और प्रशांत राधे जाधव कालेगांव जाफराबाद से आपकी फरमाइश आई। व्हाइटफील्ड बेंगलोर से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डू भगत। मुकेश गोस्वामी और मधु गोस्वामी है उच्च भट्टी बिलासपुर के श्रोता। प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम कुमार और सौरभ कुमार दिनारा रोहतास से हैं। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान की फरमाइश आई है गंगापुर बाजार से। तो श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आप सुन रहे थे अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ, सतर्क और सुरक्षित रहिए, यही कामना। अब प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम, नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी

0: नी जुर्माना सुनी। कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीरा अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है।
0: जी, एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओ एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
0: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं बिमलेश।

0: जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षावनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षावनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षावनों की। श्रोताओं, वर्षावन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो,
1: जी
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
7: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।

0: तो बच्चों, सुना आपने। अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: इस बार भी नहीं लगी। अरे,
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।

0: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
0: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरा माँ,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
6: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं?
6: अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरा माँ,
2: हाँ?
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।

0: क्या? हाँ गौरामा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
2: हाँ गौरामा, हाँ गौरामा।

0: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
2: हाँ, हम सब तैयार हैं।
3: किसी भी हाल में जंगल कटने
1: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
4: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
0: ये है जंगल के उपकार,
5: मिट्टी पानी और बयान,
0: मिट्टी पानी और बयान,
5: जिंदा रहने के आधार।
6: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
0: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
1: अरे कहां से
7: तुम इनकी बातों में बताओ? मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
1: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
2: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
5: हाँ,
1: हम चिपक जाएंगे।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
6: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
6: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
6: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।

0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग,
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 12:30 और 32 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं मोनिका मिश्रा के गाए भजन। पहले सुनिए संत कबीरदास की रचना।

गुरु नानक देव की रचना भी आप सुन रहे थे। कलाकार थीं मोनिका मिश्रा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है कमल कुमार का बांसुरी वादन। राग है मुल्तानी, तबले पर संगति की है श्याम कुमार मिश्रा ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कमल कुमार का बांसुरी वादन, राग था मुल्तानी। तबले पर संगति की श्याम कुमार मिश्रा ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 1 बजने को है, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम

0: चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:05 हुए हैं। आपको जानकारी दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। थानाध्यक्ष थाना विंध्याचल मिर्जापुर से प्राप्त एक सूचना के अनुसार सरिता, पिता का नाम पन्नालाल पाल, ये भवानीपुर विंध्याचल मिर्जापुर की निवासी हैं और 18 मार्च 2026 की सुबह 10 बजे से अपने गांव भवानीपुर से लापता हैं। सरिता की आयु है 23 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग कोरा, चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो थानाध्यक्ष थाना विंध्याचल मिर्जापुर को सूचना दें। कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार गुंजा पटेल, पिता का नाम अशोक पटेल, ये दयालीपुर मंगारी फूलपुर वाराणसी की निवासी हैं और 9 मई 2024 से लापता हैं। गुंजा पटेल की आयु 17 वर्ष 6 माह, रंग गोरा, चेहरा गोल, आंखें और बाल काले हैं। इनकी लंबाई है 5 फीट 2 इंच। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सूट सलवार। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो प्रभारी मिसिंग सेल कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी को सूचना दें। प्रभारी चिल्ड्रेन मिसिंग सेल कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार शिवा कश्यप, पिता का नाम आशीष कश्यप, ये गोईठा लालपुर पांडेपुर वाराणसी के निवासी हैं और 28 मार्च 2026 से अपने घर से लापता हैं। शिवा कश्यप की आयु है 15 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला, आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग की पूरे बाह की टी शर्ट और गाढ़े नीले रंग की पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो चिल्ड्रेन मिसिंग सेल कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा। रात में 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। अंजुमन कार्यक्रम होगा रात में 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे गजलें, फनकार होंगे उषा टंडन और

हिम्मत अली। शाम 6:30 पर कार्यक्रम किस जगत में लोकगीत के कलाकार होंगे राधे श्याम सोटा वाले और साथी, इनके गाए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत में भी सुन सकते हैं। साथ ही कृषि जगत कार्यक्रम में एग्रो टूरिज्म और ग्रामीण विकास विषय पर डॉक्टर निखिल कुमार सिंह से बातचीत सुनवाई जाएगी। प्रसारण समय याद रखें शाम 6:30 का। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात, शाश्वत त्रिपाठी का काव्य पाठ, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत, धरती के गीत कार्यक्रम होगा शाम 5:00। इसमें आज आप सुनेंगे सुरेश गुप्ता और कुमारी रत्ना भौमिक के गाए ब्रज गीत, सुहाने तराने, ये कार्यक्रम होगा 2:30 पर, प्रस्तुति पूजा सिंह की। 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में चर्चा और गीत संगीत के अलावा डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा फेफड़े का संक्रमण, कारण, लक्षण और उपचार। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: बलि की पूजा के साथ भंडारे का इनाकाद किया जा रहा है, जहां शाम तक प्रसाद तकसीम किया जाएगा। रियासत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से 22 मई तक रियासत के बेशतर इजला में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इजला में दर्ज हरारत 47 डिग्री के पार जाने के इम्कान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया को पूरी तरह अलर्ट रहने के अहकाम दिए हैं। इस दौरान मरकजी वजारत आयुष ने शदीद गर्मी और लू के हालात से निपटने के लिए अवामी सेहत मशावरात जारी किया है।
1: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दरियासना महकमा मौसमियात ने आज से चार दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की, जबकि कम से कम दर्ज हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने आगरा, औरैया, बलिया, बांदा, भदोई, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कौशाम्बी, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली और वाराणसी के कई मकाम पर हीटवेव से लेकर शदीद हीटवेव चलने के इम्कान ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 41 सेकंड हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अग्नैया कार्यक्रम सुनने वाली सब बहिन लोगन के नमस्ते आ संगे में गुंजा तोहरों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते मुनक्का दीदी, नमस्ते आ संगे संगे बहनी लोगन के भी नमस्ते।
0: ये गुंजा
1: हाँ
0: देखा जरूरी न रहत बहिन लोगन से मिले के ना आ उ लोग से बतकही करे के ना तो हम तो देखा आज घरे से बाहरे ना निकलित हो।
1: अरे एकदम सही कहा तू हो दीदी, जानत हो एक घड़ी तो ऐसा लगा तो कि घर में रहल जाए, बाहरे कौनो काम के लिए ना निकलल जाए। लेकिन का करल जाए, कामो जरूरी हो, निकले भी जरूरी हो। तब भाई जब गरम पड़ा था ना, उसे तो मनई का हालत एकदम से खराब हो गया ला।
0: यही से तो देखा जानकार लोगन आ अपन मौसम विभाग के ओरी से चेतावल गया है कि बहुत जरूरी है ना तब जवान है कि कुछ दिन तक बाहरी निकला मतलब नहीं तो प्रयास करा कि घरे में रहा। यहू में देखत हो कि छने छने जवन है बिजली चल जाता है ना तो और जैसे गर्मी के कह सकलू कि सहयोग करत है कि तू और बढ़ के लगा हो।
1: बात तो सही कहा तू। एक घड़ी तो जब लाइन चल जाता ना, तो न घरे में चैन मिला, तो न दुआरे पे चैन मिला, तो कहाँ जाए मन, यही सोच सोच के परेशान हो। लेकिन हाँ भाई एक बात कहब,
0: कौन का
1: कहब ई कि देखा इ लाइन का जो परेशानी हो ना, एके देखत भयल देखा अपने सरकार के ओरी से भी बड़ा ध्यान दिया जातो। अब देखा ना एक जो योजना चलावल गेल हो, पीएम सूर्य घर योजना, ऐसे देखा हो कितना लाभ मिलत है।
0: अरे पूछे के हो हम तो कहें कि गांव में बहुत सा घर ऐसा हुआ बहुत सा बहिन लोगन के घरे देखबू तो छते पर सोलर पैनल लग गयल है और भाई लाइन चल भी जाता ना तो उनके घरे पंखा चलत हो कूलर चलत हो आ कितना बहिन लोगन तो ऐसे

0: चलाए वाला कुकर रख ले लेन, ऐसे बड़ी उनके लाभ हो कि देखा। अब तो अपने गांव में भी है मीटर लगल है बिजली का, हो जितना
1: हाँ
0: खर्चा करबू उतना तुह के पैसा देवे के होई है ना। बाकी जेकरे घरे ये लग गल बा ऊ तो एकदम खुश बा, खर्चा करत बा ना बिजली अपने मन के।
1: खर्चा करे के बाद जवन बच जात हो ना, एकर लाभ इहो हो कि जवन बिजली बच जात हो वो बिजली आप वापस सरकार के बेच भी सकेलू। अब भाई ऐसे तो कमाई भी हो था।
0: एकदम कमाई होता तो कहे के ही है कि देखा बिजली या ऊर्जा का जवन भी साधन हो, एके जितना जरूरत है बहिन लोगन उतना उपयोग में लिया मैं है ना, जब जरूरत हो तब। ई नहीं कि अब ही देखा कहबू ना गर्मी तो पड़ता हो,
1: हाँ
0: कूलर चला के घरे में छोड़ के बाहरे हैं, मने करात बात इहे जवाब मिलत बाय कि तन घरवा ठंडा रही है। हो सकला कोनो दुर्घटना भी ऐसे हो जाए तो भाई जागरूक बना, जितना जरूरत हो जब जरूरत हो उतने बिजली का उपयोग करा।
1: भाई बात तो बड़ा नीक का कहा तू मुनक्का दीदी कि जितना जरूरत हो उतने उपयोग करल जाए। और देखा जब हम लोग जितने जरूरत रहे उतने उपयोग करम ना, तो अपने गांव देश समाज के तरक्की तो होबे करी। और देश समाज के तरक्की का जवन बात करत है ना, तो ऐसने में देखा सरकार भी ए तरफ ध्यान देत हो, जैसे कि देश का जवन अल्पसंख्यक लोगन हवन उनकरे खातिर देखा ये जो प्रधानमंत्री जी का 15 सूत्री कार्यक्रम चलत हो ना, उसे भी भाई लोगन लाभ लेत हवन। ऐसे भी इनकरे जिंदगी में देखा बड़ा फर्क पड़त हो।
0: बिल्कुल फर्क पड़ा तो भाई देखा अपने गांव समाज में सबके हुए एक समान तो नहीं हो गुंजा
1: हाँ
0: है ना।
1: हाँ
0: वही में कोई के तनी सा स्थिति जो ना बहुत अच्छा ओकरे हाथ में पैसा हो, अगर लड़का ऊंचा पढ़ाई पढ़ल चाहत हुआ तो पूरा कह देता, या कौनो तरह का व्यवसाय करल चाहत हुआ तो ओहू के अपन कह लेते हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसा हुआ जैसे अल्पसंख्यक भैया बहन लोगन का हमने बात करत है, तो उनकर आर्थिक स्थिति अगर ना बढ़िया बाय है ना, या वो अपन जौन पुश्तैनी व्यवसाय हो ओके वो आगे ना बढ़ा पावत हुआ, तो ऐसने लोगन खातिर है ना ये जौन है कि अल्पसंख्यक लोगन के कल्याण बदे सरकार के उरी से सहायता दिहल जात हो, जौने से कि उनकर आर्थिक स्थिति बढ़िया बन सके। साथे में जौन बहिन लोगन हैं ना एमन एकर नाम है देखा 15 सूत्री, यानी कुल मिला के 15 ठे ऐसा एमन बात
1: कार्यक्रम चलत हो।
0: हाँ, जौने
1: हाँ
0: से कि ऐसने लोगन के अपने समाज के मुख्य धारा से जोड़ल जा सके, जौने से वो भी अपने समाज में सबके साथे मिल के अच्छे से रह सकें।
1: एकदम सही बात कहलू हो दीदी। देखा हो इमें कितना नीक नीक योजना चलावल जात हो, जैसे बहिनी लोगन का हो लइकन बच्चन के स्वास्थ्य सुधार के लिए योजना हो। और देखा इतने नहीं जब पानी हम लोग पियल जला, देखा स्वच्छ जल योजना भी यही चलत हो कि मने साफ पानी पिए ओकर स्वास्थ्य सुधर सके।
0: बिल्कुल। और यही के साथ है जो बहन लोगन गर्भवती हैं उनके पोषण का पूरा ध्यान रखे खातिर, या जो बहन लोगन स्तनपान करावत हैं उनके स्वास्थ्य का और उनके जो शिशु हुआ उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे बदे भी सहायता दिहल जात हो। तो देखा हो गुंजा हम कहीं ना कि जितना भी सहायता चलत हो सरकार के ओरी से ओकर लाभ तब्बे मिली जब घरे से बाहरे निकली हैं, जानकारी ली हैं।
1: तो जानकारी लेने खातिर भाई जरूरी हो अपने आसपास से पता करा, नहीं तो जिसे पता चला तो उसे पता करके एकर लाभ उठावल जाए। और जब जानकारी का बात कहल जात हो तो देखा इस संदेश से भी जानकारी जरूर मिली, तो पहले संदेश सुन लेहल जाए।
0: हो जाओ
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
6: 054-222-7658।
4: ओ 054-222

0: 7658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: से उतार चढ़ाव की वजह से मौसम से हो तब तक ठीक बा, लेकिन ऐसा अगर ज्यादातर उनकी दिक्कत होत हो ना तब तो ई देखा सोचे के विषय है और गंभीर बात हो।
1: भाई बात गंभीर ना बने, एकरे पहले ही डॉक्टरी के चल जाए आ अपन इलाज करवा लेवे।
0: बिल्कुल।
1: तो हम समझा था कि आज बहनी लोगन खातिर जोन बतकही लेके आवल है ना, तो ओकरे बारे में पहले बहनी लोगन के बता दी ताकि बहनी लोगन भी सुन सके आ हम वो लोग सुन सकी। तो आज का बतकही हो फेफड़ा का संक्रमण कारण लक्षण आ उपचार। ए पे डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव से बतीले हुए सुधीर श्रीवास्तव भैया, तो एके सुने।
2: डॉक्टर GM श्रीवास्तव, आप भूतपूर्व विभागाध्यक्ष रहे हुए चेस्ट विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान वाराणसी में। आज हम ये आपसे जानल चाहब कि ये जो फेफड़ा का संक्रमण होला, जैसे कि कबो कबो जौन हो खांसी आवेले, बुखार आवेले, लेकिन कौने कारण से होत हो ये जान नहीं पोतल लोग, और एहर उहर के इलाज करे में जैसे कि वो बढ़ जाला, तो का एकर मतलब समाधान हो, का लक्षण हो, एक विषय में आप जानकारी दें हमारे बहनिन के।
3: धन्यवाद आप हमें मौका देवन। फेफड़ा का संक्रमण आम भाषा में जेके बोल जाए इन्फेक्शन हो गए। अक्सर मरीज आके कहता है कि हमरे इन्फेक्शन हो गए फेफड़ा में, डॉक्टर साहब देखा। कई ढंग का इन्फेक्शन होला, बैक्टीरिया से भी होला, वायरस से भी होला, कभी कभी फंगल फफूंदी से होला, लेकिन सबसे कॉमन आजकल चला तो मौसम बदलाव हो जो मौसम का संधि खाल होता
2: जी
3: उनमें एक तो बैक्टीरिया दूसरा वायरस, ये दोनों के कारण इन्फेक्शन होला, जेके आम भाषा में हम लोग निमोनिया भी बोलल जाला। तो निमोनिया का मतलब फेफड़ा में ओके बैक्टीरिया अंदर घुस गई और ओकरे बाद ओकर अपना दुष्प्रभाव देखा होता।
2: जी
3: तो अमूमन क्या
2: तो
3: होला
2: ये
3: कि
2: बैक्टीरिया कौन माध्यम से अंदर प्रवेश कराला?
3: बैक्टीरिया सांस के माध्यम से अंदर प्रवेश करेला। कभी
2: अच्छा।
3: कभी बहुत ठंडा लग गई तो ठंडा वाटर के में भी अंदर प्रवेश कर गई। अमूमन जब सांस के नली के थ्रू अंदर चल गई तो फेफड़ा में एयर सैक होला, जहाँ जाके हम लोग हवा ऑक्सीजन ये सब लेला, उस जगह बैक्टीरिया पहुंच जाला और हल्का से पानी का असर पड़ेला जिसके कारण कि संक्रमण हो जाला। और जब संक्रमण हो जाए तो बैक्टीरिया उनमें पनपेला कायदे से और फिर अपन दुष्प्रभाव दिखाए लगेला।
2: तो डॉक्टर साहब जैसे ना बताऊँ है कि मौसम का संधि काल में ज्यादा प्रभाव पड़ला, तो का तापमान के अंतर से भी कुछ पर दुष्प्रभाव
3: हाँ
2: हो?
3: बिल्कुल, एकाएक जैसे लोग ठंडा से गर्म में निकल गेलन, गर्म से ठंडा में गेलन, शादी में आ गेलन एकदम कोल्ड ड्रिंक पी लेलन, तो
2: अच्छा।
3: नतीजा भइल कि ओके कहला कि गए लली शादी में कोल्ड ड्रिंक पी लेली और जाके दूसरे दिन हमके बहुत तेज सीना में दर्द भइल, खांसी अइलस, बुखार जाड़ा दे के कपकपी अइलस और ओकरे बाद हमें सांस फूले लगा। और कभी कभी खांसी तक खून हल्का से लालचों दिखाई दे, तो एक का मतलब कि एक प्रभावित हो गए लोग से निमोनिया से।
2: अक्सर ऐसा होला कि घामे से जो लोग आवन है घरे में तुरंत चाहे ना कि हम पानी पी के अपन प्यास बुझा ली, तो ऐसा ना करे चाहिए।
3: होला क्या कि लोग का गला सूखे लगे लगे लगा कि जान गए। हमार राय लोगन से हो, खासतौर से आजकल दोपहरिया के महिला हमारी बहन जो है मार्केटिंग करके आई, शादी ब्याह का मौसम चला था, ओकर बाद लोग इकट्ठा भइलिन, भइलिन चला कोल्ड ड्रिंक पी लेल जाए, चला लस्सी पी लेल जाए, आ यही नुकसान कर जाला वही में कोई के, और
2: जी।
3: नतीजा होई कि तुरंते उनके निमोनिया का संक्रमण हो जाए।
2: दूसरा चीज ये हो ना कि देखा माता बहन कबू कबू चल जानी जो घास काटे भी है, घास लेके आवत है हाथ पैर में उनके जो ना मट्टी लगल बा है ना, तरह तरह के समझ ला पेड़ पौधन से संपर्क में बा, वही हाथे अगर पानी पी लेते हैं तो का एकर भी कुछ
3: एकदम असर हो,
2: पड़े?
3: गंदगी तो कोनो भी बीमारी का जड़ है, संक्रमण है वही हाथ से पानी पी ले लेन, तो जितना गंदगी बैक्टीरिया हो वायरस हो ये सब तो हर जगह है ही हो एटमॉस्फेयर में,
2: जी।
3: तो वही पानी पी लेन, वही हवा में गई और वही उनके इन्फेक्शन कर देलस।
2: तो मुख्य रूप से का एक लक्षण दिखाई पड़ा, कैसे जाने कि हमें बीमारी हो गई हो?
3: होला क्या कि मरीज कही कि डॉक्टर साहब हमके सीना में दर्द होता हो कोई खास जगह पर, ओकरे बाद खांसी आवत हो एकाएक दर्द दौड़ के बाद ओके बुखार तेजी से जाड़ा दे के आवत हो, कपकपी दे के आवत हो, अब
2: अच्छा।
3: बुखार 103 104 चल गई, हल्का फुल्का न रही, खांसी आई और सांस फूले लगी, तो ये सब लक्षण के देख के लगी कि फेफड़ा में लगा तो निमोनिया का असर पड़ गया।
2: अच्छा, तो ऐसे में क्या करे के चाहिए उन्हें?
3: ऐसा में उनके तुरंते अपने डॉक्टर से मिले चाहिए और ठंडा उंडा बचाए चाहिए तुरंते का तुरंत, और डॉक्टर से मिलके डॉक्टर से बताई तो डॉक्टर अपन जांच उच करके
2: जी।
3: फिर उनके राय दी कि देखा एक बलगम का जांच कर ला, बलगम के जांच से ही फायदा हो जाए कि पता चल जाए हमके कि कौन सा बैक्टीरिया हो कौन सा वायरस हो, जैसे कि हम वही हिसाब

0: करब। दूसर छाती का एक्सरे जो ना आजकल सरकारी अस्पताल में हर जगह अवेलेबल है, आराम से हो जाता हो, तो ये दूसरे पता चल जाए कि तुके छाती में कौन पोर्शन में निमोनिया प्रभावित करत हो। अमूमन एक फेफड़ा में होला, लेकिन दोनों फेफड़ा भी प्रभावित कर दे रहा, पूरे फेफड़ा में भी नहीं होला, फेफड़ा दो तीन भाग में बटल हो तो कोई एक छोटा से भाग से लेके बड़ा भाग में हो जाला। तो ये साधारण एक्सरे छाती का और बलगम के जांच से 90% समझ ला जांच क्लियर हो जाए कि एक निमोनिया फेफड़ा के कौन भाग में और क्या दिक्कत हो।
1: अच्छा, तो फेफड़ा के कोनो एक भाग में भी हो सकला और पूरे फेफड़ा में भी हो।
0: होला कि कितना बड़ा पोर्शन के वो प्रभावित कर ले हो, हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो तो एक ही भाग में हो गई, और तगड़ा इन्फेक्शन हो तो पूरा फैल जाए दोनों फेफड़ा में।
1: माने धीरे धीरे ही बढ़त चल जाला, अगर डॉक्टर भैया के यहाँ जाए में देरी करी है या लापरवाही करी है तो बढ़ जाए।
0: हाँ, ये बढ़ सकेला। जो आम भाषा में बोले ना कि डॉक्टर साहब डबल निमोनिया हो गई लो, डबल निमोनिया का मतलब ये भी हो सकेला कि दोनों फेफड़ा में हो, और डबल निमोनिया का मतलब भैया कि पहले कुछ भइल अभी पूरा ठीक ना भइल फिर दोहरा देलस। लेकिन अगर कायदे से इलाज ना भेल, सही इलाज नहीं समय से भेल, तो ये खतरनाक हो सकेला।
1: अच्छा, तो ये दोनों जांच आप जो बतावत हुआ ये सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हो
0: एकदम उपलब्ध हो, हर जगह
1: और
0: उपलब्ध
1: ऐसे
0: हो।
1: जानकारी मिल जाए कि हाँ इनका संक्रमण फेफड़ा का हो कि नहीं हो और कितना हो
0: हाँ, ये
1: उसके
0: करीब
1: हिसाब
0: करीब
1: से।
0: ये दो जांच से 90% एकदम क्लियर हो जाए कि कितना हो, किस चीज़ का इन्फेक्शन हो, और कितना हमें पर गंभीरता से अगर इलाज करब तो ठीक हो जाए।
1: तो डॉक्टर साहब सावधानी का रखे के चाहिए, अक्सर माता बहिन हमरे हैं तो घरेलू काम काज कुल नहीं के करे के होला, पानी में हमेशा रह के होला।
0: अगर कुछ ऐसा आभास लगे तो जैसे बतैली ना कि एकाएक कोल्ड ड्रिंक न पी ले, एकाएक एसी न पी ले, घरे से अलेन गला सूखा तो फ्रिज का पानी न पी ले, घड़ा का पानी न पी ले, ये सबसे थोड़ा बचे कोई,
1: अच्छा।
0: एकदम ठंडा से गरम, गरम से ठंडा ना हो पाए, तो ये भी एकाएक दिक्कत बढ़ा दे, दिक्कत इनका।
1: नहीं, घरेलू काम जो उनके करे के हो जैसे मान ला कि दिनचर्या में अपने नहाए धोए के बा या चाउर दाल धोए के बा, ये तो पानी का काम बा ना, बर्तन धोए के बा, तो ये कुल काम कैसे करने के
0: अरे ये
1: रहे।
0: सब तो करे ही के हो, लेकिन ये कि थोड़ा से बचाओ, कहीं किसी अपने सामाजिक कार्य से, घरेलू कार्य से बाहर गए लीन, धूप है इतना तगड़ा, बाहर से आ गए लीन घरे, एक नहा ले लीन, तो थोड़ा सुस्ता के कायदे से नहाए, ठंडा पानी से बहुत नहा, नॉर्मल पानी से नहाए। देखल गए लोग कि लोग चापाकल से नहा लेलन, बोरिंग के पानी से नहा लेलन, वो एकदम ठंडा करेला तो वो भी नुकसान कर सकेला। तो उसे सुस्ता के थोड़ी देर 5-10 मिनट रुक के तब नहाए धोए तब काम में कोई दिक्कत ना हो। आप बीमारी हो जाए उसके बाद तो रेस्ट लेना जरूरी है, लेकिन काम अपन रूटीन जोन करत हैं, चावल पछोरे के हो, घर का काम कर, बर्तन वर्तन
1: गैया
0: सब
1: भैंस
0: करत
1: ना
0: हैं।
1: आवे के बाद
0: अगर
1: महिला
0: गैया
1: मन चल
0: भैंस
1: गई बाहरे जो काम करे तो यो कुल काम करे के हो जाला
0: हाँ
1: उन्हें।
0: तो इस काम तो जरूरी पड़े लाई, दिनचर्या का चीज हो, लेकिन
1: जी
0: इतना हो कि अब दोपहरिया के ना गैया हुई के बाहर खिलाए, क्योंकि बाहर एकदम ऐसा में मौसम देखा तो आपकी 40 डिग्री हो और कमरा के अंदर का 25 डिग्री हो, 30 डिग्री हो,
1: जी
0: तो ये दिक्कत करी उनके।
1: और खान पान में क्या सावधानी रखें।
0: खान पान में गरिष्ठ वजन खाए, प्रोटीन डाइट जो ना जैसे पनीर और छेना हो, अगर आदमी शाकाहारी हो तो ये सब बड़ा काम करी। ओकरे बाद अगर अंडा खाए उनमें भी प्रोटीन हो तो थोड़ा बीमारी से लड़े का क्षमता दे, ये खाए। और ठंडा बतैली के ले ले, मना वर्जित हो, ना खाए तो अच्छा हो, ना पिए तो अच्छा हो। शादी ब्याह में आजकल लोग आइसक्रीम खा लेते हैं, तो आइसक्रीम से थोड़ा से बहुत ठंडा भी बीमारी उभारे या पैदा करे के लिए सक्षम हो।
1: माने ठंडी चीज से परहेज करे के हो, चाहे खाए के चीज हो और चाहे पिए के चीज हो।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आप।
1: और का चीज खाए के हो जैसे आप बतौना है कि पनीर या जो है दूध का जो उत्पाद हो जोने से प्रोटीन ज्यादा मिले वो चीज तो खाता हूँ, चाउर दाल रोटी सब्जी इकुल जो हम सामान्य खाना खाती हूँ, साग हो चटनी हो अचार हो, का इकुल खरीद सना काम चली।
0: नहीं ये सब तो जरूरी चीज हो, एक अलावा ये सब मिल जाए तो ये और फायदा करे,
1: अच्छा
0: बीमारी से लड़े के क्षमता बढ़ा दे। मौसम चला लो माता का,
1: जी।
0: माता जो हमारी हमारे धर्म के हिसाब से बहुत पूजनीय चीज है,
1: जी
0: और एक बीमारी ऐसा हो, अभी हम लोग अभी तक यही करते ली कि मैं दवाई वाई नहीं करल जाता,
1: जी माने चिकित्सीय
0: एक
1: भाषा में आप लोगों के जन चेचक कहा जाला।
0: हाँ चेचक कर जाला,
1: जी
0: माता कर जाला, दुलारो माता है।
1: हाँ
0: आमतौर से खासतौर से ये धारणा है कि मैं दवाई नहीं, अपने आप ठीक हो, माता का प्रकोप हो, माता माई कोई कारण से नाराज हैं, ठीक हो जाए, तो बिल्कुल सही हो। इसीलिए घर पोत-पात के एकदम सफाई रखल जाला, जैसे कि इन्फेक्शन बाहर का अंदर ना आवे, लोगन के जूता पहन के अंदर नहीं आवे के पड़ेला, जैसे इन्फेक्शन ना आवे। लेकिन हमार सलाह हो कि माता का पूजा करें, हम लोग धर्म के हिसाब से पूजा करना जरूरी है, लेकिन साथ

0: माथे में अगर बुखार हो, जेके माता का प्रकोप हो, चाहे दुलारो माता हो चाहे छोटी माता हो, तो बुखार है का मतलब ओकर इन्फेक्शन तगड़ा हो गया। तो ऐसे स्थिति में आसपास कोनो डॉक्टर के जो ओकर एक्सपर्ट हो जाके दिखाए और उसका एक्सरे कराए, अगर दिक्कत हो निमोनिया का असर हो तो अच्छा एंटीबायोटिक खिलाए, नहीं तो आपके शुरू में बताइए ना कि मवाद बन जाएगा। जब मवाद बन जाए तो ओकरे जीवन पे के लिए बड़ा घातक हो, ऐसे सतर्क रहे। और आपके बता दी कि ये जो माता का प्रकोप पर भारत सरकार इतना काम किया है, इतना काम किया है कि इसीलिए बच्चों को, क्योंकि पहले माता के कारण बच्चों में डेथ रेट बहुत अधिक होता था, लेकिन आजकल ये सब जागरूकता हो गई है, इतना गांव-गांव में आशा वर्कर ये लोग बतावत ही एक दूसरे के, तो माता के कारण अब मौत की संख्या, मौत मृत्यु दर काफी कम हो गया है। तो इसलिए आप सतर्क रहल जाए, और जहां माता के प्रकोप में तेज बुखार आवत हो और तहां तुरंत डॉक्टर से देख के अपने आशा वर्कर से मिलके उचित दवा करबू, तो आपका लाडला बच्चा बच्ची आपके साथ ताउम्र साथे रही।
1: माने कहे का कि जो समाज में एक मिथक प्रचलित हो कि हाँ माता निकलल है तो उम्र दवाई नहीं देवे के नहीं तो बढ़ जाला, तो ये सोच के धीरे धीरे बदले के जरूरत हो समय के साथ साथ, और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर जैसा आप बतावत हो कि भाई धर्म हो तो पूजा भी करे और साथ साथ ओकर इलाज भी करत रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, दोनों तरह से आराम रही, तो इससे उनके जो आराम हो सकला और ठीक भी हो सकला, नहीं तो ये रोग बहुत बढ़ सकला का प्राण घातक भी हो सकला।
0: हाँ वही कहते हैं कि मृत्यु दर पुराने के अपेक्षा बहुत कम हो गई, क्योंकि अब जनता जागरूक हो लगा, सरकारी दिशा में बहुत काम करत हो, नतीजा होता कि आपका मृत्यु दर काफी कम हो गया। तो पूजा पाठ के साथ दवा दुआ कहल जाना ना कि दोनों चलेला, तो दवा भी चली और दुआ भी चली। और आजकल एकर एक वैक्सीन भी आ गए, निमोकाकल वैक्सीन करके,
1: अच्छा।
0: बच्चों का भी अब बुजुर्गों का है एक चीज, तो वैक्सीन जरूर लगा ले, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम में एक वैक्सीन हो,
1: अच्छा,
0: दो महीना से लेकर पांच साल
1: लगत हो।
0: हाँ लगत हो एकदम सरकारी अस्पताल में,
1: अच्छा।
0: दूसरा एडल्ट के हम लोग ये कहब जो बुजुर्ग हो गए कि बीड़ी सिगरेट छोड़ दे, ये भी कभी कभी घातक हो जाला निमोनिया के लिए,
1: अच्छा।
0: धुआं बीड़ी सिगरेट तो ये पोल्यूशन के रूप में जो होत हो वो भी छोड़ दे तो अच्छा है। अब बुजुर्ग लोग के भी पूरे ताउम्र में 65 के बाद एक निमोकाकल वैक्सीन लगेला, और 65 साल के उम्र के पहले भी 2 या 3 निमोकाकल लगेला, तो जिससे निमोनिया का दुष्प्रभाव शरीर पर कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो ये दो चीज का ध्यान रखे आदमी।
1: आप एक चिकित्सक के हैसियत से का सलाह देवल चाहिए हमरे बहनिन के?
0: बहनिन के कहब कि पहली बात जैसे ही पहला लक्षण आवे आप तुरंत अपने के डॉक्टर से सलाह लेला, जैसे कि ओकर घातकता कम रहे तब भी पकड़ में आ जाए, जैसे कि जान पर खतरा ना हो, धुआं हुआ का काम अगर तो दौरान न करें, शादी ब्याह में जाए तो ऐसा ना हो कि एक अत्थे ठंडा पिए लगे, थोड़ा से ओके गर्म हल्का सा होकर टेम्परेचर तापमान कम हो जाए ठंडापन तब पिए। अगर घर के कोई सदस्य बच्चा छोट बच्चा के माता चेचक माता निकल गई हो तो आप इलाज भी करवाए और साथ में पूजा भी कराए, जैसे कि घर में खुशी का माहौल बनल रहे, कोई दुखद समाचार न रहे।
1: तो डॉक्टर जी एन श्रीवास्तव आप हमारे पंचायती में ना और इतनी अच्छी जानकारी हमारे बहनों के देना कि ये जो संक्रमण हो ये कहे होला कैसे होला और कैसे उपचार करे के चाहिए का सावधानी बरते के चाहिए, ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आप हमें मौका दिलन कि अपने बहनन के माताजी के बीच में आवे के पहला।
2: देखा अभी बहन लोगन सुनत रहनी है कि फेफड़ा का संक्रमण कैसे होला और एकर कारण का हो, एकर लक्षण का हो, और ऐसे उपचार एकर उपचार कैसे होए के चाहिए, हाँ ये विषय पर डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव से सुधीर कुमार श्रीवास्तव को बतकई होत रहला और बड़ा फरिया के बड़ा अच्छे से बतौने हैं और बहन लोगन भी वैसे ही ध्यान दे के देखा सुन ले हुई हैं।
3: भाई बात कही तो हो गया, जानकारी भी मिल गया, तो अब बहनी लोगन के देखा गीत गौनाई की ओर ले चलल जाए, सुनावल जाए ई गीत।
4: भौजी ई भौजी

0: गंगा जैसन भौजी हमार, गंगा जैसन भौजी हमार।
1: देखा गाँव नहीं तो होगल और निक रहे ऐसा रिश्ता हो ना गुंजा कि का बताई एक दूसरे के बात अगर कहे के होला घर के घरे में बड़ बुजुर्गन के तो एक दूसरे के सहयोग हो जाला हो।
2: अजन भौजी जब ऐसा घरे में आ जाए तो वो घर सड़क से बेहतर हो जाला।
1: हाँ हो जाला, बिल्कुल सही कलुआ। देखा मौसम को बात करत ही जाते, ये मौसम में थोड़ा सा अगर खाए पिए पर ध्यान देवल जाए गुंजा तो मौसम का जोन दिक्कत हो वाली है उससे राहत मिली। जैसे पानी वाली चीज खाए है ना, जौने से शरीर के जौन है पानी की पूर्ति होते।

0: ओहू में अगर सत्तू हो तो उसे शरीर के ठंडक मिलल आई पोषण से भरल हो, तो एक जरूर लेते रहें।
1: तो बहनी लोगन अपन ध्यान रखे ही गर्मी में, और पानी पियत रहे, और मौसमी फल और तरकारी का भी सेवन करत रहे।
0: बिल्कुल। अब बतकही करत करत बहिन लोगन से देखा अब विदा लेवे के समय हो गल, तो गुंजा चलल जा। नमस्ते।

0: ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 और 16 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। कलाकार हैं राधे श्याम सोटा वाले और उनके साथी। पहले सुनते हैं इनका गाया गंगा गीत।
1: हो रहा

0: अब एक कहरवा आइए सुने, कलाकार हैं राधे श्याम सोटा वाले और उनके साथी।
1: और 14 वर्ष नींद नार, 14 वर्ष नींद नार।

इस दादरा के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कलाकार थे राधे श्याम सोटा वाले और उनके साथी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: Headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend third India-Nordic summit in Oslo aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson in a joint newspaper article stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilised or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री

0: जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया।

0: दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
2: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान

0: कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदार

0: बीमारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आप सुनेंगे सुहाने तराने।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मौसम चाहे कोई भी हो दोस्तों, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल के मौसम को पल भर में रोमांटिक बना देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आपकी रुड़ दोस्त पूजा और लेकर हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम सुहाने तराने। दोस्तों, साल 1993 में महेश भट्ट साहब की एक फिल्म आई थी, फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म के सारे गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन एक गाना ऐसा था जिसने उस दौर के हर आशिक को अपनी खिड़की पर आकर चांद को निहारने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सबका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। इस गाने के बनने के पीछे का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। इस फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे अनु मलिक साहब। कहा जाता है कि अनु मलिक उस दौर में अपनी धुनों को लेकर बेहद पैशनेट थे, और जब उन्होंने इस गाने की धुन बनाई तो उन्हें शब्दों में वो गहराई चाहिए थी जो सीधे रूह को छू ले। तब एंट्री हुई महान शायर कैफी आज़मी साहब की। जब कैफी साहब को ये धुन सुनाई गई तो उन्होंने इस धुन के मिजाज को पकड़ा और ऐसे जादुई शब्द लिखे जो आज भी अमर हैं। उन्होंने लिखा, नया नया प्यार है, पहली मुलाकात है, खोए खोए दोनों हैं, तारों भरी रात है। और जानते हैं मजे की बात, इस गाने में उदित नारायण और अलका याग्निक जी की जो जुगलबंदी है वो इतनी नेचुरल थी कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं और चेहरे पर मुस्कान थी। इस गाने की सादगी और इसके पीछे का स्क्रीन प्ले इतना ओरिजिनल था कि महेश भट्ट साहब ने इसे बिना किसी बड़े बदलाव के जैसी धुन बनी थी वैसे ही फिल्म में रख लिया। आज के दौर में जब हम रिमिक्स और लाउड म्यूजिक के बीच खो जाते हैं, तब ये सुहाने तराने हमें याद दिलाते हैं कि असली संगीत वो है जो कानों में शोर नहीं बल्कि दिल में सुकून पैदा करे। तो चलिए, अब इंतजार नहीं कराते, सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की मखमली आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो वक्त की सीमाओं को लांघ कर अमर हो जाते हैं। जब भी वो कान में पड़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल किसी अनजानी दुनिया में खो जाता है। साल 1968 में एक फिल्म आई थी, नीलकमल। राजकुमार, वहीदा रहमान और मनोज कुमार साहब की वो बेहतरीन अदाकारी। लेकिन इस फिल्म की आत्मा छुपी थी इसके एक सॉन्ग में, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। आज सुहाने तराने के पन्नों से मैं इसी कालजयी गीत के बनने की एक बेहद दिलचस्प कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस गीत को अमर बनाने का श्रेय जितना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को जाता है, उतना ही इसके संगीतकार रवि साहब और गीतकार साहिर लुधियानवी साहब को भी जाता है। कहा जाता है कि जब साहिर साहब ने इस गाने के बोल लिखे तो वे बेहद भारी और संजीदा थे। रवि साहब के सामने चुनौती ये थी कि यह ऐसे प्रेमी का गाना था जो इस दुनिया में नहीं है, जो एक रूह बनकर अपनी प्रेमिका को पुकार रहा है। संगीत ऐसा होना चाहिए था जिसमें दर्द भी हो, ठहराव भी हो और एक अजीब सा रहस्य भी। रवि साहब ने इसके लिए पियानो और वायलिन का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया कि धुन सुनते ही आंखों के सामने वो धुंध और पुरानी हवेली का मंजर तैर जाता है। लेकिन असली जादू होना अभी बाकी था। जब मोहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग रूम में आए तो उन्होंने इस गाने को सिर्फ गाया नहीं बल्कि उस दर्द को जिया। जब वो गाते हैं ना, आंखें नीची हुई, सर झुक गया, तो उनकी आवाज़ का वो उतार चढ़ाव सीधे सुनने वाले के कलेजे को चीर देता है। इस गीत के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आज करीब 6 दशक बीत जाने के बाद भी ये प्यार और ये गीत वैसा ही ताज़ा और अमर है। तो चलिए इस दोपहर को थोड़ा और रूहानी बनाते हैं। अपने काम को थोड़ी देर के लिए थामिए, आंखें बंद कीजिए और खो जाइए रफ़ी साहब के इस जादुई पुकार में। सुनिए फिल्म नीलकमल से आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार।

सुहाने तराने कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरे यानी पूजा के साथ। दोस्तों, साल 1993 में एक फिल्म आई थी, बाजीगर। इस फिल्म ने शाहरुख खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे, लेकिन एक गीत ऐसा था जो आज भी जब कानों में पड़ता है तो दिल की धड़कनें जैसे ठहर सी जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आइकॉनिक गाने के बनने के पीछे एक बेहद दिलचस्प और मज़ेदार किस्सा है। ये बात उन दिनों की है जब इस फिल्म का म्यूज़िक तैयार कर रहे थे हमारे चुलबुले और टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर अनु मलिक साहब। अनु मलिक जी ने इस गाने की धुन तैयार की थी और इसे गाया था मशहूर गायक विनोद राठौड़ जी ने। किस्सा ये है कि विनोद राठौड़ साहब उस समय बॉलीवुड में अपनी भारी और दमदार आवाज़

बस के लिए जाने जाते थे। जब वो स्टूडियो पहुंचे तो अनु मलिक साहब ने उनसे कहा, विनोद यह गाना एक ऐसे आशिक का है जो अंदर से बहुत बेचैन है, जो टूट रहा है। मुझे तुम्हारी आवाज़ में वो दर्द, वो कशिश और वो भारीपन चाहिए। विनोद जी ने गाना गाना शुरू किया, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन अनु मलिक साहब बार बार रीटेक करवा रहे थे। वो कह रहे थे, बात तो सही है विनोद, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा और पागलपन चाहिए, थोड़ा और दर्द चाहिए। तब विनोद राठौर जी ने एक कमाल की ट्रिक अपनाई। उन्होंने गाने के अंत में जो ऊंची तान ली और अपनी आवाज़ को जिस तरह से थोड़ा सा क्रैक किया, जब वो रिकॉर्ड हुआ तो स्टूडियो में बैठे सभी लोग खड़े हो गए। अनु मलिक ने तुरंत विनोद जी को गले लगा लिया और कहा, बॉस यही तो मुझे चाहिए था। तो चलिए, मेकिंग की बातें तो हो गई, अब वक्त है इस जादुई और सदाबहार नगमे को बिना किसी खलल के सुनने का। अपनी आंखें बंद कीजिए और डूब जाइए 19 के दशक के इस सबसे खूबसूरत और दर्द भरे रोमांटिक तराने में। सुनिए, छुपाना भी नहीं आता।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें जब भी सुनो दिल के अंदर एक अजीब सी टीस और मीठा सा दर्द उठता है। साल 1973 में आई एक फिल्म थी अनामिका, जिसमें संजीव कुमार और जया भादुड़ी जी थे। इस फिल्म का एक गीत आज भी जब कानों में पड़ता है तो रूह कांप जाती है, मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए। किशोर दा की दर्द भरी आवाज़, आर डी बर्मन यानी पंचम दा का जादुई संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी साहब के लिखे वो लाजवाब शब्द। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर्द में डूबा ये आइकॉनिक गाना दरअसल एक बहुत ही मज़ेदार और डांसिंग ट्यून से प्रेरित होकर बना था? चलिए आज आपको सुनाती हूँ इस गाने के बनने का एक बेहद दिलचस्प किस्सा। किस्सा कुछ यूं है कि बॉस यानी पंचमदा एक बंगाली लोकगीत यानी बाउल गान से बेहद प्रभावित थे, जिसके बोल थे, है रे धन्य मोटो मानुष। यह एक बहुत ही

तेज रफ्तार ढोलक और मंजीरे की थाप पर गाया जाने वाला तेज और चुलबुला गाना था। पंचमदा इस धुन को हिंदी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहते थे। जब फिल्म अनामिका के निर्देशक रघुनाथ झालानी ने पंचमदा से एक ऐसा गाना मांगा जो नायक के दिल के टूटने और उसकी बेबसी को दिखाए, तो पंचमदा ने इसी तेज और चुलबुली बंगाली धुन को उठाने का फैसला किया। अब आप सोचेंगे कि भला एक नाचने गाने वाली तेज धुन से इतना दर्द भरा गाना कैसे बन सकता है। यही तो पंचमदा की जीनियस सोच थी। उन्होंने उस तेज बंगाली धुन की रफ्तार को एकदम धीमा कर दिया। उन्होंने ढोलक की जगह गिटार और सितार के गूंजते हुए सुरों को पिरोया, और जब मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने उस पर शब्द लिखे तो वो धुन पूरी तरह बदल गई। धुन तैयार थी, शब्द सामने थे, लेकिन इस गाने में असली जान फूकना अभी बाकी था, और वो जान फूकी हमारे प्यारे किशोर कुमार साहब ने। किशोर दा आमतौर पर अपनी मस्ती और चुलबुले गानों के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब वो मर्मस्पर्शी गाने गाते थे तो सीधे कलेजे को चीर जाते थे। रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर दा ने अपनी आवाज़ में जो ठहराव, जो उदासी और जो गहराई दी, उसने इस गीत को अमर बना दिया। जब वो गाते हैं ना, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, तो ऐसा लगता है जैसे कोई टूटा हुआ दिल सच में चीख रहा हो। कमाल की बात है ना, एक तेज और खुशमिजाज बंगाली लोकगीत पंचमदा के विजन और किशोर दा की आवाज़ से मिलकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सैड सॉन्ग बन गया। यही तो संगीत का जादू है दोस्तों। तो चलिए दिल के तारों को थोड़ा सा झंकृत करते हैं और सुनते हैं पंचमदा और किशोरदा की जुगलबंदी से उपजा ये सुहाना तराना।

सुहाने तराने कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरे यानी पूजा के साथ। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक दौर के लिए नहीं बनते, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज जब हम प्यार का इजहार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, तब भी बैकग्राउंड में जो धुन सबसे ज़्यादा रूह को सुकून देती है वो है प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो। साल 1978 में आई फिल्म कॉलेज गर्ल का यह गीत आज भी हर आशिक की पहली पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किशोर दा की आवाज़ में सजे इस बेहद रोमांटिक गाने के बनने के पीछे की कहानी क्या है? चलिए आपको बता

आती हूँ। इस गाने को संगीत से संवारा था डिस्को किंग बप्पी लहड़ी साहब ने, और इसके बेहद खूबसूरत बोल लिखे थे इंदिवर जी ने। आज भले ही हम बप्पी दा को उनके डिस्को और फास्ट गानों के लिए जानते हैं, लेकिन इस गाने को बनाकर उन्होंने साबित कर दिया था कि मेलोडी के मामले में भी उनका कोई जवाब नहीं था। इस गाने के बनने का एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है। दरअसल यह गीत मशहूर वेस्टर्न सिंगर सच्चा डिस्टेल के एक फ्रेंच इंग्लिश गाने यू आर द सनशाइन ऑफ माई लाइफ के एक रीमेक वर्जन से प्रेरित था, लेकिन बप्पी दा ने जब इस धुन को भारतीय रंग में ढाला तो वो कमाल हो गया। उन्होंने इसमें जिस तरह से गिटार के कॉर्ड्स और ड्रम का इस्तेमाल किया, उसने इस गाने को एक मॉडर्न और फ्रेश टच दे दिया जो उस दौर के कॉलेज गोइंग्स को बेहद पसंद आया। धुन तो तैयार थी, लेकिन इसमें जान फूंकने का काम किया महान किशोर कुमार साहब ने। कहा जाता है कि जब किशोर दा ने स्टूडियो में इंदिवर जी की लिखी ये लाइनें पढ़ी, आज ही छोड़ दो शिकवे गिला प्यार करो, तो उन्होंने बप्पी दा से कहा था, बप्पी इस गाने की सादगी ही इसकी जान है, मैं इसे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करूँगा, इसे एकदम दिल से गाऊँगा। और सच में किशोर दा ने अपनी मखमली आवाज़ में जो ठहराव और जो कशिश इस गाने में दी, उसने पर्दे पर एक्टर सचिन पिलगांवकर और एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी की केमिस्ट्री में चार चांद लगा दिए। आज इतने सालों बाद भी जब यह गीत कानों में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात है। तो दोस्तों, पुराने गानों की यही तो खासियत है, इनकी मेकिंग जितनी दिलचस्प होती है इनका सफ़र उतना ही सुहाना होता है। चलिए अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती हूँ, अपने दिल के दरवाजे खोलिए, बीते ज़माने की यादों में खो जाइए और सुनिए किशोर दा की जादुई आवाज़ में यह सदाबहार नगमा।

0: दोस्तों, समय हो गया है सुहाने तराने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हमारे साथ शेयर करिए। और अब अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाने तराने। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स, ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज के गीत। कलाकार हैं सुरेश गुप्ता और रत्ना भौमिक।

धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ब्रज के गीत। कलाकार थे सुरेश गुप्ता और रत्ना भौमिक। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: अरे भानु, आज तो तुम्हारा बैडमिंटन स्टूडियो तक आ पहुंचा। भाई संभल कर यहाँ शॉट मत मारो, वरना शटल कॉक सीधे माइक पर लगेगी और बजट हमारा हिल जाएगा।
0: अरे नहीं, आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड फेयर प्ले डे मना रही है तो स्टूडियो में थोड़ी स्पोर्ट वाली वाइब तो बनती है ना।
1: वाइब बिल्कुल बनती है, इसलिए आज बात सिर्फ खेल की नहीं होगी बल्कि इस बात की होगी कि खेल कैसे पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है और जीवन को नए तरीके से जीने का अनुभव साझा करता है। जैसा हम कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है।
0: सही बात है, आजकल हमारा खेल सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर सिमट गया है। मैदान तो जैसे हम भूल ही गए हैं, जबकि खेल का मतलब ही है लोगों से मिलना, फिट रहना और लाइफ को एंजॉय करना। और सबसे बड़ी बात, खेल हमें सिखाता है निष्पक्ष रहना।
1: लोग सोचते हैं खेल सिर्फ बच्चों के लिए है या प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए है, जबकि यह सच है कि रोज सिर्फ आधा घंटा कोई भी आउटडोर गेम खेलना आपके स्ट्रेस को क्लीन बोल्ड कर सकता है। खेल सिर्फ बॉडी फिट नहीं रखता बल्कि दिमाग को रीबूट करता है। वर्ल्ड फेयर प्ले डे तो मनाया ही इसलिए जाता है कि हम जीवन में नई सोच और नया नज़रिया देखें।
0: बात तो पते की है। वैसे जब वर्ल्ड फेयर डे की बात चल ही रही है तो ओलंपिक इतिहास का एक बड़ा मजेदार, दिल छू लेने वाला किस्सा याद आ गया, सुनना चाहोगे?
1: अरे बिल्कुल, किस्से के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ भानु।
0: बात है साल 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स की। ब्रिटेन के एक धावक ने डेरेक रेडमंड को 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल के सबसे बड़े दावेदार थे। रेस शुरू हुई लेकिन बीच में ही अचानक उनके पैर की मांसपेशी खिंच गई और वो दर्द से मैदान में गिर गए।
1: दोस्तों, सबने ये सोचा कि मेडिकल टीम स्ट्रेचर लेकर आएगी, लेकिन डेरेक ने मना कर दिया। वह रो रहे थे, दर्द में थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो नंगे पैर लंगड़ाते हुए ही सही पर रेस पूरी करेंगे। और तभी दर्शकों के बीच से सुरक्षा घेरा तोड़कर एक आदमी दौड़ता हुआ ट्रैक पर आए। जानते हैं वो कौन थे?
0: कौन थे?
1: उनके पिता। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया, उनका हाथ पकड़ा और कहा, हम यह रेस मिलकर पूरी करेंगे। और उन दोनों लोगों ने मिलकर वो फिनिशिंग लाइन पार की। वहां बैठे 65,000 दर्शकों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई थी। और दोस्तों, यहां हम देखते हैं कि खेल की भावना कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी है कि इसमें न केवल जीतने वाले बल्कि कोशिश करने वालों को भी पूरी प्रशंसा मिलती है।
0: वाह, ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। अर्चना, इस किस्से से एक बात समझ में आती है, खेल सिर्फ मेडल जीतने का नाम नहीं है, खेल नाम है हार न मानने के जज्बे का, परिवार के सपोर्ट का और अपनी रेस पूरी करने की जिद का।
1: बिल्कुल सही भानु।
0: अर्चना, अब वो हो गया है श्रोताओं को गाना सुनाने का समय, तो सुनते हैं ये गाना।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: अर्चना, ये इतिहास की किताब में वो पन्ना कहाँ गया?
5: भानु, गाना खत्म हो गया, हम लाइव हैं और तुम अभी भी इतिहास की इस भारी भरकम किताब में सिर घुसाए बैठे हो, क्या ढूंढ रहे हो भाई?
4: अरे मैं बस एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा ढूंढ रहा था। आज 19 मई है ना, भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी का जन्मदिवस है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना श्रोताओं के उनका एक ऐसा रिकॉर्ड शेयर किया जाए जो भारत के इतिहास में इकलौता है।
5: अच्छा, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है भाई, जरा हमें भी बताओ।
4: बात है साल 1977 की, राष्ट्रपति चुनाव की। नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के इतिहास के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी उनके खिलाफ चुनाव में कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ था।
5: वाह, ये तो सच में उनकी साख को दिखाता है कि हर पार्टी के लोग उनकी कितनी इज्जत करते थे। वैसे भानु, उनके बारे में एक और बात बहुत मशहूर है जो आज के समय में हम सबको सीखनी चाहिए।
4: अच्छा, वो क्या है?
5: अब जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देश की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति भवन के 340 कमरों के आलीशान हिस्से को छोड़कर एक बहुत ही छोटे से घर में रहने

0: करने का फैसला किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सैलरी का 70% हिस्सा भी देश के लिए छोड़ दिया था।
1: सच में अर्चना, इसे कहते हैं असली सादगी और जनसेवक। पद चाहे कितना भी बड़ा हो, अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए।
0: बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आज इस महान राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर हम भी अपने जीवन में थोड़ी सी सादगी लाने की कोशिश करते हैं और अर्पण

0: हेलमेट के ऐसे जिगजैग कट मार रहे थे जैसे सीधे यमराज से मिलने की जल्दी हो।
1: भानु, तुमने बिल्कुल सही मौके पर सही बात उठाई। दोस्तों, आज यानी 19 मई से लेकर 25 मई तक पूरी दुनिया में यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ सरकार या पुलिस को याद दिलाना नहीं है, बल्कि हम सबको ये समझाना है कि सड़क पर हमारी एक लापरवाही किसी की जान ले सकती है।
0: सच में लोग सोचते हैं कि पुलिस के डर से हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट लगाना है। भाई, पुलिस तो सिर्फ चालान काटेगी, लेकिन अगर हादसा हो गया तो भुगतना तो पूरे परिवार को पड़ता है ना।
1: बिल्कुल सही। आंकड़े बताते हैं कि हर साल सड़क हादसों में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और इनमें से ज्यादातर हादसे सिर्फ थोड़ी सी सावधानी रखकर टाले जा सकते थे। गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल न करना, स्पीड लिमिट में रखना और रोड लाइट जंप ना करना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं।
0: अर्चना, मुझे लगता है कि अब दोस्तों को गाना सुनाने का वक्त आ गया है।
1: बिल्कुल भानु।
0: तो दोस्तों, सुनिए ये गाना।

0: तो दोस्तों, इस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक में किसी और से नहीं, खुद से एक प्रॉमिस कीजिए। जब भी गाड़ी पर बैठें, हेलमेट और सीट बेल्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। आपकी सुरक्षा में ही आपके परिवार की खुशी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो सुरक्षित रहें, सुरक्षित पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आज मंगलवार है, तो अब वक्त हो गया है कि हम आपको सुनाएं आज का काव्य पाठ।
0: और काव्य पाठ करेंगे शाश्वत त्रिपाठी जी।
2: सभी को सादर प्रणाम। मैं शाश्वत त्रिपाठी और मेरी कविता का विषय माँ भारती पर समर्पित है। देवों ने थी जिस धरा की उतारी आरती, देवों ने थी जिस धरा की उतारी आरती, स्वर्ग से सुंदर धरा, जय जननी जय माँ भारती, जय जननी जय माँ भारती। तुमसे है संसार सकल, तुमसे है संसार सकल, तुम त्याग धर्म की परिभाषा। तुमसे है संसार सकल, तुम त्याग धर्म की परिभाषा, भूमंडल तेरा अभिलाषी, तुम मानव की हो अभिलाषा, तुम मानव की हो अभिलाषा। कविता सी स्पष्ट निष्कपट, कविता सी स्पष्ट निष्कपट, चहुं ओर व्याप्त उत्कर्ष तेरा, कृतज्ञ हम माँ भारती, गूंजे चहुं ओर भारतवर्ष मेरा, गूंजे चहुं ओर भारतवर्ष मेरा। वीरता उत्कर्ष यह माँ भारती के भेद हैं, वीरता उत्कर्ष यह माँ भारती के भेद हैं, विश्व में सबसे पुरातन मात्र अपने वेद हैं, मात्र अपने वेद हैं। भारत माता को समझो, भारत माता को समझो, समझो अनंत बलिदानों को, भारत माता को समझो, समझो अनंत बलिदानों को, मर मिट कर जो अमर हुए, मर मिट कर जो अमर हुए, समझो उन अभिमानों को, समझो उन अभिमानों को। थी जगी भावना गौरव की, थी जगी भावना गौरव की, जन जन में था बलिदान जगा, थी जगी भावना गौरव की, जन जन में था बलिदान जगा, जग उठे सकल हो वीर एक, ऐसा प्रचंड अभिमान जगा, ऐसा प्रचंड अभिमान जगा। लिखी रक्त से शोणित से, लिखी रक्त से शोणित से, है शूरों की यह गाथा, लिखी रक्त से शोणित से, है शूरों की यह गाथा, परम वीर हैं पले गोद में, परम वीर हैं पले गोद में, है भारत जिनकी माता, है भारत जिनकी माता। आजादी केवल शब्द न हो, आजादी केवल शब्द न हो, यह जन जन की अभिलाषा हो, आजादी केवल शब्द न हो, यह जन जन की अभिलाषा हो, वंदे मातरम स्वर गुंजित हो, प्रत्येक हृदय की भाषा हो, प्रत्येक हृदय की भाषा हो। भारत को पालती धरा, भारत को पालती धरा, और यह धरा धन्य हो जाती, भारत को पालती धरा, और यह धरा धन्य हो जाती, वीर सपूतों को पाले, वीर सपूतों को पाले, है धन्य धन्य वह माटी, है धन्य धन्य वह माटी। भारती से प्रेम हो, माँ भारती से प्रेम हो, सद्भावना मन में लिए, माँ भारती से प्रेम हो, सद्भावना मन में लिए, चल पड़े उस राह पर, निज को समर्पित ही किए, निज को समर्पित ही किए। अन्यथा वे सूरमा, अन्यथा वे सूरमा, क्या शूर कहलाते कभी, अन्यथा वे सूरमा, क्या शूर कहलाते कभी, त्याग करके देह क्या अमरत्व को पाते कभी। हो अभय विस्तार करके ही प्रणय, वे धैर्यता को धारते, हो अभय विस्तार करके ही प्रणय, वे धीरता को धारते, जैसे विधाता सृष्टि के निर्माण

0: माड़ में शत्रुओं को तारते, शत्रुओं को तारते। एक और कविता, जब बेटा, जब देश को समर्पित व्यक्ति, जब देश का बेटा शहीद होने वाला होता है तो अपने अंतिम क्षणों में क्या सोचता होगा देश के लिए, सुनिएगा। हो गया है शीश ऊंचा भारती तेरे लिए, हो गया है शीश ऊंचा भारती तेरे लिए, दे दिया जीवन समूचा भारती तेरे लिए, माँ भारती तेरे लिए। था एक प्रण प्राणों से प्यारा अंक में सोता रहा, था एक प्रण प्राणों से प्यारा अंक में सोता रहा, हो अभय निर्भीक शोरित पंक में खोता रहा, शोरित पंक में खोता रहा। किंतु पंकज पंक से बन आरती तेरे लिए, हो गया है शीश ऊंचा भारती तेरे लिए, दे दिया जीवन समूचा माँ भारती तेरे लिए, माँ भारती तेरे लिए। वह बेटा देश की रक्षा में तो जाता है लेकिन पीछे अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाता है। अपने अंतिम क्षणों में अपने वृद्ध माता पिता के बारे में क्या सोचता होगा, सुनिएगा। कप कपाते पांव थे जिनके नयन कुछ बोलते थे, कप कपाते पांव थे जिनके नयन कुछ बोलते थे, खींचते साहस सुखों से अश्रुओं को तोलते थे। किंतु तज संसार को बन सारथी तेरे लिए, हो गया है शीश ऊंचा भारती तेरे लिए, दे दिया जीवन समूचा माँ भारती तेरे लिए, माँ भारती तेरे लिए। वह बेटा शहीद होता है तो जाते जाते भी देश को कुछ देकर जाता है, देश के युवाओं को कुछ देकर जाता है, देश के युवाओं में चेतना भर के जाता है। गोलियों का भार ढोता नवचेतना का बीज बोता, गोलियों का भार ढोता नवचेतना का बीज बोता, इन करों में कर्म की धारा सजोते प्राण खोता। नव चेतना के ज्वार पर कर्म की धारा दिए, नव चेतना के ज्वार पर कर्म की धारा दिए, हो गया है शीश ऊंचा भारती तेरे लिए, दे दिया जीवन समूचा भारती तेरे लिए, माँ भारती तेरे लिए। वह बेटा जब अपने घर पहुंचता है तो घर वालों की क्या स्थिति होती होगी, क्या दशा होती होगी, सुनिएगा। जिनके नयनों के ही सम्मुख बीता था बचपन सारा, उनके नयनों का क्या होगा जब घर लौटेगा प्यारा। जिनके नयनों के ही सम्मुख बीता था बचपन सारा, उनके नयनों का क्या होगा जब घर लौटेगा प्यारा। बोलेंगे जन जन स्वजनों से मैं नहीं अकेला आया, फिर आक्रोश जगेगा जन में संग चेतना लाया, हो गया है शीश ऊंचा भारती तेरे लिए, दे दिया जीवन समूचा भारती तेरे लिए, माँ भारती तेरे लिए। धन्यवाद
1: दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये देश प्रेम से जुड़ा काव्य जरूर आप सभी को पसंद आया होगा। तो इसी के साथ अब वक्त हो गया हमारे उस सेगमेंट का जिसका आप सबको रोज इंतजार रहता है, हमारे यूथ डायरी यानी आज के शब्द का।
2: जी हाँ, क्योंकि हमारी डायरी का मानना है कि हर दिन कम से कम एक नया शब्द तो सीखना ही चाहिए, ताकि जब आप किसी से बात करें तो आपका इम्प्रेशन एकदम कड़क पड़े। और आज का हिंदी का शब्द है दोस्तों संवेदनशील, अंग्रेजी में इसे सेंसिटिव कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी दूसरे के दुख दर्द, उसकी भावनाओं या किसी परिस्थिति को गहराई से महसूस करना और उसके प्रति दया का भाव रखना।
1: और हमारा आज का इंग्लिश शब्द है सेगेशियस। इसका मतलब होता है दूरदर्शी, चतुर या ऐसा इंसान

0: जो बहुत समझदारी भरे फैसले लेता हो, मीन्स वाइज और शोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट। तो दोस्तों, आज अपनी डायरी में ये दोनों शब्द नोट कर लीजिए। दूसरों के प्रति रहिए संवेदनशील और लाइफ के फैसले लीजिए थोड़े सगेशियस।
1: क्या बात है! तो इन दो खूबसूरत शब्दों के साथ ज्ञान का कोटा आज का पूरा हुआ।
0: अभी कहाँ, हमारे दोस्त हमसे जुड़ते हैं हमारी मजेदार जानकारियों के लिए ही तो भानु। तुम्हारी तरह क्लास के बैक बेंचेस थोड़े ही होते सारे।
1: अरे ऐसा नहीं है अर्चना, मुझे भी बहुत कुछ पता है।
0: तो चलो फिर बताओ आज के इतिहास के दिन के बारे में।
1: तो आज के ही दिन 19 मई 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक व क्रांतिकारी कदम था।
0: और दोस्तों, सिनेमा लवर्स के लिए एक और मजेदार फैक्ट है कि साल 1926 में आज ही के दिन एडिसन थिएटर में थॉमस एडिसन ने दुनिया की पहली कॉमर्शियल टॉकी यानी बोलती शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया था।
1: क्या बात है अर्चना! और कोई ज्ञान बचा हो तो वो भी दे दो।
0: ये ज्ञान नहीं, सूचना है रोजगार की।
1: अच्छा, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल, ट्रेडमैन और पायनियर पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती 9195 पदों के लिए है। CRPF आवेदन फॉर्म 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 19 मई 2026, यानी आज लास्ट डेट है। जल्दी से आवेदन करें।
0: तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि आज की सूचना क्या थी। अब इसी के साथ सुनते हैं आज का ये गीत। दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि हमारा आज का प्रश्न क्या है। भानु, प्रश्न बताइए। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि कल हमने आपसे प्रश्न किया था, भारत में FM की शुरुआत कब हुई थी। इसका उत्तर है 23 जुलाई। और जिन दोस्तों ने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम हैं चंदा चंदौली से, मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से, दुर्गेश नागनपुरे वंदना और बाबू दिव्यांश नागनपुरे ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। दोस्तों, सुनिए ये गीत।

दोस्तों, गीत से पहले हमने सुना कि हमारा कल का प्रश्न क्या था और उसका उत्तर और हमारे विनर्स का नाम। आप सभी सही उत्तर देने वाले श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज का प्रश्न, जो है कि किस महाद्वीप को अंधेरे का महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, किस महाद्वीप को अंधेरे का महाद्वीप कहा जाता है। और आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी youth_AIR वाराणसी और youth_AIR_VNS@gmail.com पर।

0: तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों से लेकर खेल के मैदान तक का आज का हमारा ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है।
1: हाँ अर्चना, वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि आज यानी 19 मई का दिन हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत भावुक दिन है। आज के ही दिन साल 1979 में हिंदी के महान निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस दुनिया से अलविदा कहा था।
0: बिल्कुल भानु, भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा और अशोक के फूल जैसी उनकी कालजयी रचनाएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जैसा कि उन्होंने लिखा था,
1: जीना भी एक कला है, लेकिन कैसा जीना? जो परिस्थितियों से डरकर झुक जाए, वो जीना क्या? असली जीना तो वो है जो कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराए, जो सूखी चट्टान की छाती चीर कर भी अपना रस खींच लाए। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। हंसकर जियो तो हर मौसम वसंत है, रोकर जियो तो पतझड़ का कोई अंत नहीं। कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात कही है कि सच में विपरीत हालातों में भी मुस्कुराते रहना रहना चाहिए
0: सच
1: हमेशा।
0: में कितनी गहरी बात है भानु। और हमारा ये रेडियो और हमारी बातें भी तो इसीलिए हैं कि हम आपकी शाम को थोड़ा और खूबसूरत, थोड़ा और पॉजिटिव बना सकें। बिल्कुल दोस्तों, तो चलते चलते बस यही कहेंगे, लाइफ में मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, मुस्कुराने का जज्बा कभी नहीं खोना चाहिए।
1: तो दोस्तों, बिल्कुल, अब चलते चलते हमको दीजिए इजाजत,
0: मुझे
1: मैं
0: यानी अर्चना,
1: और मुझे यानी भानु को।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार दोस्तों।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 24 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 21 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार जो रिले होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। समाचारों के साथ देश भर में पेट्रोल और डीजल के करीब 90 पैसा प्रति लीटर का रिपोर्ट, यह एक सप्ताह से उतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट तेल की कीमतों में आई भारी। इसमें प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में इंधन और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए लावारिस कुत्तन के टीकाकरण वापिस न छोड़ने के अपन पहले के निर्देश के वापिस लेने से मिना कह दे हो। प्रस्तुत बार एक रिपोर्ट।
1: न्याय

0: पीठ ने नवंबर 2025 की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है करने वाले अधिकारियों को अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। समाज
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र का महामहिम राजा हेराल्ड पंचम के सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस दिया गये। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री कई गो ऑडियो मंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे का सर्वोदय पर बधाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कहने की 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई के विस्तार का प्रतीक हो। प्रधानमंत्री धरती माता खातिर पूरा मानव एगो सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करत प्रधानमंत्री कहने की पूरा दुनिया एगो घर के तरियन हवे जहां हर संस्कृत का आपन महात्म आ सम्मान बा। भीषण गर्मी और लोह के असर से गोरखपुर आयकरे लगे के पूर्वी जिलन के सतही करीब पूरा प्रदेश मौसम विभाग की ओर से एक हफ्ता 21 मई ले गर्मी के साथ साथ रेड अलर्ट जारी कर गया बा। हमारे संवाददाता बताने कि राज्य में बांदा जिला तापमान के साथ लगातार दूसर को दिन सबसे गर्म जगह रहल।
2: बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है जिससे राज्य के कई हिस्सों में प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की। मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात। तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आयुष मंत्रालय ढेरे गर्मी और लू के आधिपुरह जन स्वास्थ्य परामर्श जारी।
3: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित।
1: मौसम विभाग प्रदेश के 21 मई ले मौसम शुष्क रह सतही बेरियो चलने का संभावना। आचार पूरा भइल। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। खेल दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 10 बजे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुन सकेंगे रात 9:30 पर। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में होंगे कलाकार उषा टंडन और राहत अली।

किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर, जिसमें डॉक्टर संजीव कुमार से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा गर्मी में आहार विहार, साथ ही राधेश्याम सोटावाले और साथियों के गाए लोकगीत भी सुने जा सकेंगे। फिल्म संगीत श्रोता सुन सकेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7:00, 7:31 पर रसरंग और रात्रि 8:15 पर रस माधुरी कार्यक्रम में। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की, और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में सुनिएगा पंडित रविन्द्र नारायण गोस्वामी का सितार वादन रात्रि 10:30, सुबह 7:31 और दोपहर 12:45 पर। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में वृक्षारोपण हेतु तैयारी विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनिएगा सुबह 6:10 पर और विचार बिंदु 6:30 पर। सुबह 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनिएगा सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 7:00 और मधुरिमा 8:45 पर। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुन सकेंगे दिन में 11:00।

दिन में 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जिसमें बहनें सुनेंगी स्मिता केसरी की वार्ता डिजिटल संतुलन है जरूरी। साथ ही होगा सेगमेंट गीत संगीत, सेहत ज्ञान और जायका। युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15 पर, जिसमें कल के आकर्षण होंगे आज की बात, मार्गदर्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे कलाकार होंगे व्यास जी मौर्या। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। कानून और हम कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 10 बजे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत।

धड़कन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। समीर के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जो रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीयोर्जा रक्षाव्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्तलेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन मानव जीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम् असाध्य रोगिणाम् अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्ट शुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमति प्रदत्ता। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। तृतीयं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलनम् अद्य नॉर्वे देशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना

0: वर्षस्य भारत व्यापार परिष्कार शिखर सम्मेलने मंत्री भाषमाणः आसीत्। श्री गोयलः अवदत् यत् वर्तमान वैश्विक परिस्थितिः भूराजनैतिक अनिश्चितताः च भारतस्य कृते व्यापार प्रतिक्रियां सुदृढं कर्तुं द्रुततर परिष्कारान् स्वीकर्तुं महत्तर स्थितिस्थापकायाः निर्माणं कर्तुं आपूर्तिशृङ्खलाः सुदृढां कर्तुं च अवसरत्वेन द्रष्टव्यम्। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी जिनपिंग वर्येण सह मेलनं करिष्यति। क्रेमलिन इत्यस्यानुसारम् उभौ नेतारौ आर्थिक सहयोगस्य विषये प्रमुखेषु प्रादेशिक वैश्विक विषयेषु च चर्चां करिष्यतः। एषा यात्रा चीन रूस मैत्रीसन्धेः 25 वर्षाणाम् उपलक्ष्ये आचर्यते। एषा वार्ता तदा अभवत् यदा वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षस्य मध्ये चीनदेशः अमेरिकादेशेन रूसदेशेन च सह स्वस्य सम्बन्धान् सन्तोलयति। युक्रेन द्वन्द्वस्य विषये पाश्चात्य प्रतिबन्धानाम् अनन्तरम् अपि चीनदेशः रूसदेशस्य बृहत्तमः वाणिज्यिक सहभागी रूसदेशस्य तैल प्राकृतिकेन्धनस्य प्रमुखः क्रेता चास्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स सनराइजर्स हैदराबाद दलानि च पूर्वमेव प्ले ऑफ क्रीडायां प्रविष्टवन्तः। मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स दले स्पर्धातः बहिः गतवन्तः। पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स दलानि अधुनापि अंतिम स्पर्धा याम संति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

पंचो राम राम। पंचलोक देखा रोटी कपड़ा और मकान। देखल जाए तो ये जिंदगी में जौन है बहुत जरूरी होला। आ यो बा कि मुख्य रूप से लोग बाग जौन है यही के जतन करे में देखल जाए तो अपन पूरी जिंदगी जौन है बिता देवे न। आ जौन घर का अगर बात कल जाए तो घर जौन है हर मनई बदे बहुत जरूरी है। भाई अपने धरती पे देखल जाए तो गर्मी जाड़ा बरसात ये तीन तरह का जौन मौसम रहेला। तो ओमा गर्मियों के समय सबके चाह रहे कि हमार बढ़िया घर रहे मकान रहे। आ गर्मी जाड़ा बरसात माने तीनों मौसम कहीं न कहीं सबके बदे ये कहेला कि भाई घर के अंदर सुरक्षित आ सही तरीके से रह के अपन स्वास्थ्य लाभ भी ले सकत है। आ हमने खेती किसानी वाले लोगन के अगर देखल जाए तो अगर उत्पादन होगल अपन फसल का अनाज आएगल तो ई होला चिंता कि भाई अनाज के कहाँ रखल जाए। मौसम का कौनो ठीक ना होला कब बरसात होए लगा अनाज अपन भीग जाए तो जितना भी करल मेहनत हो वो कुल डांड हो जाला। आ या तो भाई और कौनो भी मौसम रहे तब भी होला कि भाई अनाज

0: के रख दा, नहीं तो ऐसे अनाज खराब हो जाई। तो भाई एक तरह से देखल जाए तो मिला जुला के कि घर बहुत जरूरी है। जेकरे पास पंच लोग ये समय अगर मकान ना हो या टूटल फूटल झोपड़ी हो, कच्चा मकान हो, तो भाई बरसात के घड़ी में हमन देखले ही जा कि जब ओरी चुए आया तक खपड़ैला में से कहीं न कहीं से पानी जोन है रिस्क के बरसात के घड़ी में अंदर गिरे लगा, तब लोग जोन है बड़ा परेशान हो जाए कि भाई कैसे कैसे के रोपल जाए पानी के, नहीं तो पूरा घर में जोन है भर जाई। बरसात आवे से पहले ही तमाम लोग अपन जोन है छाजन करे का व्यवस्था कैले कि कैसे छाए लेवल जाए, अपन छप्पर खपड़ैला के कैसे सही कर लेवल जाए, नरिया पटिया उखाड़ के एक बार फिर से लोगों के नए सिरे से एकदम नया बना दें ताकि बरसात आवे से पहले जोन है कि पानी का समस्या न रहे। अब जोन है देखा सरकार ऐसे लोगन बदे पंच लोग बड़ी व्यवस्था करत बा, बड़ा ध्यान देत हो, खासतौर से गरीब लोगन बदे। गांव का जोन गरीब हों उनके बदे भी जोन है प्रधानमंत्री आवास योजना जोन ग्रामीण है ओके लेके आवल गल बा कि भाई जे लोग ज़रूरतमंद हैं, जेके जरूरी है कि इन्हें मकान होए के चाहिए, खासतौर से पक्का मकान, तो इसने ज़रूरतमंद लोगन बदे ये योजना बा। एमा बड़ा तरह का लाभ है भैया। देखा सबसे बड़ चीज़ तो ई बा कि ई योजना जोन है ग्रामीण आवास योजना के तहत जोन धनराशि लाभार्थी लोगन के देवल जाले भैया, वो सीधे सीधे देखा खाते में चल जाला। ऐसे एहर ओहर होए का गुंजाइश भैया ना रहे ले, खाते में गएल पैसा आ वहाँ जोन है निकाल के बैंक से अपन जौने तरीके से काम करवा के अपन पक्का मकान बनवावे के है, मने लोग बनवा लेते हैं भाई। देखा मैदानी क्षेत्र के लोगन बदे लगभग 1,20,000 जोन है देयात बा, आ जोन दुर्गम जगह बा, पहाड़ी बा, जहाँ आवागमन का साधन तनी कम बा, तो इसने जगह तनी उहो जो ना खर्चा बढ़ जाला तो ओहू के वहन करत के समझ ला 1,30,000 का व्यवस्था कह जाला। आ कई किस्त में दिखाई दियाला, धीरे धीरे मनई लोग अपन काम करे ना, आ काम दिखेला पैसा जो ना मिलत जाला। तो ये तरह से देखल जाए भैया कि पात्र लोग जोन हो ना जे गरीब हुआ जेके जरूरत हो, ऐसने लोगन का पात्रता के हिसाब से मापदंड बनल है वैसे लोगन के छाँट लेवल जाला आ उनके जोन है खाते में भैया पैसा दे के उनकर पक्का मकान जोन है बनवा देवल जाता सरकार की ओर से, आ खुशहाल सब रहत बा भैया। तो देखा ई तो अपन ग्रामीण आवास योजना का बात हो गई। अब जोन है पंचो अपने पंचायती में जोन और बतकही करल जाई, लेकिन हई जोन सनेश है ना ये सनेश के पहले सुन लें।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 24 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 21 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: पंच लोग देखा सनेश तो होगल। आ भैया हो देखा मौसम इस समय जो है ना बड़ा विकराल गर्मी का हो, आ ये घड़ी जो है बड़ा संभर के रहे के हो, कैसे रहे के हो, का खाए के हो, का पिए के हो, ए कुल के बारे में देखा गर्मी में अपन आहार विहार कैसन हो, यह विषय पे जोन है बतकही हो डॉक्टर संजीव कुमार से बतियोले हों दिनेश कुमार सिंह। तो ये बतकही के सुनाए।
6: डॉक्टर संजीव कुमार, आप द्रव्य गुण विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो आज हम आपसे जानना चाह

0: बाकी जो गर्मी वाला मौसम हो इसमें अक्सर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, गर्मी लग जाती है, धूप लग जाती है। तो ये संबंध में आप बताएं कि क्या सावधानी लोग बरतें इस समय, कौन तरह से उनके खान पान हो के चाहिए, रहन सहन हो के चाहिए।
1: इस समय हम लोगों को
0: जी
1: खान पान में ज़्यादातर मीठे पदार्थों का सेवन, घृत का सेवन, घी का सेवन, ठंडे पदार्थों का सेवन और सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए।
0: जी
1: सुपाच्य भोजन में हम किन सब्जियों का प्रयोग करें
0: हाँ
1: जिससे वो हमारे जो हाँ शरीर की जो पाचन क्रिया है उसको
0: जी
1: सही रखे,
0: जी
1: उसके लिए हमको ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो सुपाच्य हों, जैसे परवल, लौकी, नेनुआ, टमाटर, करेला और ककड़ी, पुदीना, हरा धनिया, नींबू, इस प्रकार की सब्जी का प्रयोग करना चाहिए और दालों में मुख्य रूप से मूंग और मसूर की दाल का ही प्रयोग करना चाहिए।
0: अच्छा, अरहर गरक दाल ना खाक चाहिए।
1: अरहर और चने की दाल को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और अगर आप खाते हैं तो उसमें अच्छी प्रकार से घी को मिलाकर खाएं।
0: अच्छा, तो ये मैंने असर कर रहा था इनके, कुछ गर्म तरह होते हैं खाए
1: जो
0: अरहर दाल।
1: अरहर और चना की दाल है ये ज़्यादा वात को बढ़ाने वाली होती है,
0: अच्छा
1: इसलिए हमको इससे बचना चाहिए क्योंकि ये जो ऋतु चल रही होती है इसमें भी वात का संचय होना शुरू हो जाता है,
0: जी,
1: इसलिए आगे इसके प्रकोप से दूसरी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाएंगी।
0: मैंने बात का मतलब ही कि गैस वैस गड़बड़ने लगे
1: हाँ
0: पेट में।
1: इसलिए
0: अच्छा
1: और ये पचने में आसान नहीं होती हैं, इसलिए पेट में गैस जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं,
0: जी
1: उसको उससे बचने के लिए हमको इन दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और
0: जी
1: फलों में हल्के फलों का सेवन करें, खरबूजा है, तरबूज है, संतरा है, आम है, नींबू है, नारियल है और आज बेल आपको गांव में अच्छे से मिल जाता है, बेल का प्रयोग करें।
0: जी
1: और बेल और ना बेल के संदर्भ में एक चीज़ आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जिनका पेट ज़्यादातर खराब रहता है, जो दिन जिनको लगता है कि आज उन सुबह जाने में उनको तकलीफ होती है या जब वो मैदान जाते हैं तो मैदान जाने में उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको कांखना पड़ता है, तो ऐसे मरीजों को बेल का शरबत नहीं पीना चाहिए
0: अच्छा
1: क्योंकि वो बेल जो होता है वो मलों को बांध दे लेते हैं,
0: अच्छा
1: तो मल बंध जाने की वजह से
0: हाँ
1: मरीज जो है या जो भी स्वस्थ व्यक्ति भी है उसको सुबह मल क्रिया करने में या मैदान में काफ़ी तकलीफ होती है और इस कारण से कभी कभी वो इतना ज़्यादा जोर लगा देता है कि वहाँ से खून निकल जाता है
0: अच्छा
1: जिससे आगे दूसरे बीमारियाँ होने का खतरा बनता है। जैसे नारियल का पानी भी पीना है तो हम उसको जो है हमेशा रोज पीने की आदत नहीं डालें, किसी भी चीज़ को हम रोज नहीं पिएं, जैसे
0: अच्छा
1: बेल का शरबत भी पीना है तो हम रोज उसकी आदत नहीं डालें,
0: अच्छा
1: ये स्वस्थ व्यक्ति भी और जो व्यक्ति जिसको कि जो उसका मल है जो कड़ापन है उसके अंदर ऐसे रोगी भी उसको कम से कम ज़्यादा सेवन ना करें और स्वस्थ व्यक्ति भी उसको रोज नहीं पिए,
0: जी
1: नहीं तो धीरे धीरे उनके अंदर मल संचित होने की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी जिससे दूसरी व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी।
0: अच्छा, मैंने लगातार सेवन ना करे कि सही,
1: हाँ लगातार सेवन नहीं
0: तो वो
1: करना
0: चीज़
1: है।
0: सब्जी गर्म भी हुए फिर
1: हाँ
0: जैसे।
1: सब्जियों में भी होता है, का मतलब जो ठंडा है
0: अच्छा
1: ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए।
0: मैंने से ककड़ी तो यही सब बताओ तो
1: हाँ
0: हैं।
1: इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए।
0: जी अच्छा, तो ठंडा में जैसे आजकल लोग बाजार में बहुत सारे पदार्थ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलत रहते हैं, तो एकर भी बहुत लोग बहुत बस पसंद करते हैं, खूब पिए थे, तो ये कितना स्वास्थ्य के
1: नहीं
0: लिए।
1: कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों को तो हम वैद्य लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें कई प्रकार की जो शरीर के लिए हानिकारक चीज़ें होती हैं वो मिलाई जाती हैं, जैसे कि उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करते हैं लोग,
0: जी
1: उसको
0: जी
1: वो प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो जब भी आप ऐसी जगह पर जाएं जहाँ जैसे आप बाहर बाजार में घूम रहे हैं या कहीं आपको लग रहा है कि हमें प्यास लग रही है तो सब धूप में से आके आप पहुँच रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ी देर आप विश्राम करें, 15 मिनट से 20 मिनट तक आप वहाँ पर रुकें, उसके बाद उस जगह के वातावरण के अनुकूल हो जाएं
0: जी
1: और उसके बाद ही किसी भी ठंडी चीज़ या ठंडे पेय पदार्थ को लें,
0: और ठंडे पे हुए मतलब कि जो
1: जैसे
0: जो देसी
1: हाँ
0: बाटे अपने।
1: जैसे आम का पन्ना आजकल
0: जी
1: आता है,
0: हाँ
1: आम के पन्ना को लें, जल में नींबू पानी चीनी मिलाकर उसका शरबत लें, इस तरह की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें।
0: जी अच्छा,
1: और
0: सत्तू वगैरह।
1: सत्तू के बारे में आपको बताना चाहेंगे, सत्तू जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग

0: उपयोगी है। जैसे गांव में सबसे आसानी से मिलने वाला जो सबसे सबसे ज्यादा शक्तिदायक है वो है जौ का सत्तू।
1: जी
0: जौ का सत्तू को हम लोगों को हमारे यहाँ लिखा है कि उसको घृत के साथ मिला करके उसका सेवन करना चाहिए।
1: अच्छा
0: वो वृष्य होता है, वृष्य का मतलब आप ऐसे समझे कि बहुत ज्यादा बलदायक है, और वो गैस जैसी प्रॉब्लम, जैसे गैस बनती है ऊपर की तरफ लोगों को डकार आना, इस तरह की जो प्रॉब्लम जो समस्याएं होती हैं उसको काफी हद तक कम करता है।
1: अच्छा
0: और जो मधुमेह के रोगी हैं उनको भी अपनी रोटी में जो आप आटा पिसवाते हैं उसमें जौ के सत्तू को जरूर जरूर मिलाएं।
1: अच्छा मैंने गेहूं के साथ जो
0: गे
1: मिला लें
0: बिल्कुल
1: हमने।
0: मिलाएं। और मैं अपने जो श्रोता गण हैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि आप जब जैसे आप गांव में ज़्यादा देखते हैं कि लोग एक बार सुबह भोजन करते हैं
1: जी
0: और फिर अपने खेत पे चले जाते हैं या काम करने चले जाते हैं, और उसके बाद फिर शाम को घर आते हैं, फिर शाम को एक बार, यानी अब वो एक बार सुबह भोजन लेते हैं और फिर एक बार शाम को भोजन लेते हैं,
1: जी
0: तो इकट्ठा भोजन नहीं करना चाहिए। इकट्ठा भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे आप सुबह भोजन में 5 रोटी 6 रोटी, गांव में तो ज़्यादा लोग ज़्यादा और खाते हैं, तो वो एक साथ 7 8 रोटी खाते हैं, साथ में गुड़ भी ले लिए, छाछ भी ले लिए, इकट्ठा भोजन करके निकल गए खेत पे, तो
1: हाँ
0: होता क्या है, इकट्ठा ही बॉडी शरीर के अंदर शुगर बढ़ जाता है,
1: अच्छा
0: और शुगर बढ़ने की वजह से ये प्रवृत्ति मनुष्य में धीरे धीरे धीरे धीरे बनती जाती है। और हम गांव में लोगों को लगता है कि हम तो गांव में रहते हैं और हमको ये चीज़ें नहीं होगी, हम तो काम करते हैं मेहनत करते हैं,
1: जी
0: क्योंकि आजकल का खान पान जैसा जैसा हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो अब हम लोग जैसे अपनी ओपीडी में ही जैसे बैठते हैं कमरे में तो मरीज आते हैं, तो गांव के भी मरीज शहरों की अपेक्षा अब ज़्यादा आ रहे हैं
1: शुगर वाले
0: जो शुगर वाले मरीज हैं।
1: जी
0: उसका मुख्य कारण एक तो ये भी होता जा रहा है कि हम इकट्ठा भोजन कर ले रहे हैं, एक बार सुबह एक बार शाम, तो आप लोग सुबह भी नाश्ता करें, और जैसे आप दिन भर में 10 रोटियां या 12 रोटियां खाते हैं तो सुबह में 3 रोटियां खाएं, दोपहर में 4 रोटी खाएं, शाम को 4 रोटी खाएं, अपने जितना भोजन लेते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ आपका वजन नहीं बढ़ता है आप स्वस्थ हैं, उतने ही भोजन के भागों 3 भागों में 4 भागों में विभाजित करके लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा।
1: जी या बीच में कुछ नाश्ता वास्ता करते रहते हैं तो वो ठीक है।
0: नहीं बीच में नहीं, एक चीज़ और बताएंगे,
1: जी
0: हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में 4 शब्द लिखे हैं,
1: हाँ
0: जैसे समशन है, अध्यसन है, विस्माशन है,
1: जी
0: इन ये बताता है कि हम भोजन लेने के तुरंत, जैसे भोजन लेके निकले फिर बाजार चले गए, बाजार से हमको खेत जाना था, बीच में ही हमारे कुछ मित्रगण मिले और उन्होंने हमको कुछ बोला चलिए खा लीजिए, तो भोजन करने के 1 घंटे बाद ही हमने कुछ खा लिया, तो वो आपकी जो भोजन की पाचन क्रिया हो रही होती है वो 1 ही घंटे बाद गया हुआ भोजन आपकी उस पाचन क्रिया को धीमा कर देता है,
1: अच्छा
0: जिससे धीरे धीरे आपकी शरीर की पाचन क्रिया धीरे धीरे कम होती चली जाती है, फिर उससे क्या होता है, उससे तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा गया है कि जो अग्नि है जिसकी वजह से भोजन का पाचन होता है वो अग्नि धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
1: अच्छा तो वो गैस बनने लगे और कोनो समस्या फिर
0: यस
1: पेट में आवे लगे।
0: हाँ बिल्कुल, उससे गैस गैस अधिक मात्रा में बनने लगती है, गैस बनती है तो मल सुबह सही से नहीं साफ होता है, मैदान आप सही से नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
1: जी। अच्छा तो सर, जैसे लोग सुबह उठ के पानी भी पिए थे बहुत लोग, थोड़ा सा और बारे में भी बताओ।
0: हाँ पानी जो है सुबह उठ करके सबसे पहले आप सुबह उठ करके गर्म पानी का ही प्रयोग करें,
1: ये माने गर्मी में भी?
0: गर्मी में भी और हर ऋतु में भी, ठंडे पानी का प्रयोग सुबह उठ के मत करें,
1: अच्छा।
0: गर्म पानी जो है वो आपकी अग्नि को, जिससे आपका भोजन की पाचन क्रिया होती है उसको तीव्र कर देता है, हमारे यहाँ लिखा है उष्ण जल जो है वो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है,
1: जी तो
0: तो
1: हल्का गर्म हो चाहिए।
0: हल्का
1: हाँ
0: गर्म एकदम सुषुम जिसको हम लोग बोलते हैं
1: जी
0: उतना पिए।
1: अच्छा, माने गर्मी में भी जरूरी बात
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, आप सुबह और शाम रात को दोनों टाइम में पिए
1: अच्छा कितना पिए चाहिए पानी सुबह के टाइम? फिर
0: कम से कम 2 गिलास,
1: 2 गिलास, और ज़्यादा भी पी
0: आप
1: सकते
0: बिल्कुल ज्यादा पी सकते हैं।
1: हैं। और बाकी दिन में तो अपने आवश्यकता हिसाब से पिए रहे हैं।
0: आवश्यकता अनुसार पिए और कुछ चीजों का ध्यान रखें
1: हाँ एक
0: ये।
1: चीज़ और बताऊँ, जो ठंडा पानी वाली बात रहा था, ठंडा पानी लोग दौड़ के तुरंत पी लेते हैं।
0: हाँ ठंडा पानी

0: जैसे हम कहीं से सफर करके आए या कहीं बाहर से आए और घरों में आके बैठे और तुरंत हम ठंडा पानी मांगते हैं, ठंडा पानी को
1: आजकल फ्रिज का प्रचलन
0: फ्री,
1: हो गया हो
0: हाँ
1: चारों ओर।
0: हाँ फ्रिज का पानी बिल्कुल भी मत पिए आप। अपने जब भी घर में आए तो कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा तक विश्राम करें और उसके बाद ही पानी को पिए।
1: जी
0: ठंडी किसी
1: अच्छा,
0: भी
1: एक
0: चीज़,
1: असर का पड़ता है फ्रिज वाले पानी के शरीर पे?
0: उस जैसे ये जो अभी हमने आपको बताया कि ये जो ग्रीष्म ऋतु होती है इसमें क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में धीरे धीरे ये ऋतु में वात का संचय होना शुरू होता है। जो शीतल जल होता है वो वात को बढ़ाने वाला होता है,
1: अच्छा।
0: तो हमको तुरंत तो अच्छा लगता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमको उसका दुष्प्रभाव समझ में आता है।
1: जी।
0: और दूसरी बात ये है कि हम खान पान भी ऐसा ना लें जिसकी वजह से हम हमारे अंदर वात का वर्धन हो, और ऐसा भी खान पान ना लें जिससे हमारे अंदर का पित्त भी बढ़े, क्योंकि ये
1: अच्छा।
0: गर्मी की ऋतु है। जैसे ऐसे मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा नमकीन चीज़ें ना लें, नहीं तो पित्त बढ़ जाएगा और
1: अच्छा
0: आपके अंदर दूसरे रोग उत्पन्न हो जाएंगे।
1: जी। अच्छा, कफ वगैरह फिर कैसे बढ़ा था, कौन चीज़ खाए से?
0: कफ, जैसे कफ बढ़ने का कारण बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे ज़्यादा चिकना खाना,
1: जी।
0: बहुत ज़्यादा चिकनाई खाना, ज़्यादा भारी खाना, जैसे हम लोग आजकल फास्ट फूड जो चलते हैं बाहर, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये खा लिया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी लिए, फिर हम आजकल शादी बारात में जाते हैं तो शादी बारात में हम जाते हैं तो हम पूरी भी खाते हैं, कहीं मांस मछली भी बनता है तो मांस मछली भी खाते हैं, फिर वहीं बगल में दूध भी केसर वाला मिलता है, हम दूध भी पी लेते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप जब जाएं और मांस और दूध का सेवन एक साथ बिल्कुल भी ना करें, ये विरुद्ध आहार है जो हमारे यहाँ आचार्य चरक ने भी बताया है। तो इन विरुद्ध आहारों का सेवन ना करें जिससे आपको त्वचा में उत्पन्न होने वाले रोगों की उत्पत्ति हो सकती है।
1: जी। अच्छा, जो तरह तरह के व्यंजन लगा रहा था तो वह को थोड़ा सा उतना न खाए के चाहिए।
0: नहीं
1: जैसे लोग चाट भी खाता है, फिर और भी चीज़ जाएगी, दूध भी पी लेता है, फिर जाएगी पूड़ी भी खाता
0: नहीं
1: है।
0: बिल्कुल भी इस तरह से आप नहीं खाना चाहिए। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपको पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाना चाहिए।
1: अच्छा।
0: कम से कम 4 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए
1: खाना खाए एक बार।
0: खाने खाने के बाद, क्योंकि आपका भोजन सही से पाचन सही से आपके भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा
1: जी
0: और उस शरीर में सही से पोषक तत्व तो आपको नहीं मिल पाएंगे।
1: जी अच्छा, दिन में थोड़ा सा जो लोग सोवत हैं खाना खाए एक बाद, कुछ लोग तुरंत नींद लग जाते हैं, खाना खाना है वहीं पर लुढ़क जाते हैं,
0: हाँ
1: थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि कब
0: खान
1: सोए चाहिए।
0: खा जैसे ये ग्रीष्म ऋतु है तो हमारे यहाँ आचार्यों ने भी ग्रीष्म ऋतु में सोने के लिए बोला है
1: जी।
0: कि आप ग्रीष्म ऋतु में शयन करें, लेकिन कुछ
1: अरे, जाड़ा में
0: सदन
1: ना, जाड़ा में ना करें चाहिए।
0: नहीं, जाड़े में ग्रीष्म नहीं करना चाहिए। और उसमें भी कई सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने कि सोने के कई सारे तरीके हैं, कि जैसे अगर आप पहले से ही आपके अंदर मोटापा है तो और आपको खाना खाने के बाद निद्रा आ रही है तो आप बैठकर सो सकते हैं
1: अच्छा।
0: जिससे आपकी निद्रा भी आपकी पूरी हो जाएगी और आपके अंदर वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ आचार्यों ने ऐसा लिखा है। और ग्रीष्म ऋतु में आप सो सकते हैं, बाकी किसी भी ऋतु में दिन में शयन करने को मना किया गया है। और रात्रि में रात्रि जागरण के लिए बिल्कुल भी निषिद्ध बताया गया है कि रात्रि में आप बिल्कुल भी नहीं जागें देर रात तक।
1: अच्छा।
0: अंतिम में ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल जो ये ग्रीष्म ऋतु है
1: जी।
0: इसमें क्या हो रहा है कि दस्त, उल्टी, कमजोरी, बेचैनी और हम लोग बाहर जा कर के इस ठेले पे इस जगह पे खा लिए छोले भटूरे पूरी या गन्ने का जूस हम पी रहे हैं, गन्ने का जूस जहाँ पी रहा है वहाँ पर ज़्यादा गंदगी आ रही है
1: जी।
0: तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के यानी संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
1: अच्छा, फूड पॉइजनिंग भी ये हो
0: हाँ यही
1: कि?
0: इसी से फूड पॉइजनिंग भी होती है। तो इसलिए हम ऐसी जगह जाने से बचें या वहाँ पे जा कर के इन चीज़ों को खाने से बचें। और हम ग्रीष्म ऋतु यानी इस ऋतु में गर्मी के दिनों में हो कोशिश करें कि हम बाहर खाने का प्रयोग कम करें।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप दें हैं। ये गर्मी के मौसम में कौन तरह के खान पान करे चाहिए लोगों का, कौन तरह से रहन सहन रहा है, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ पंच

लोग देखा हो, कितना निमन ई बात कही रहले भैया, आ बड़ी जानकारी के चीज मा मिलल है कि कवने तरीके से एक गर्मी के मौसम में जौन है अपन खान पान होए के चाहिए, कैसे रहे के चाही, आ कैसे देखा बतौना फरिया के कि कौन कौन विरुद्ध आहार है ओकर सेवन तो भैया एक साथे करही के न चाही, आ खाए का मात्रा भी देखा अलग अलग समय पे थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके बांट लेवे के बात भइल है। आ ई कितनी निमन बात कही रहे डॉक्टर संजीव कुमार से दिनेश कुमार सिंह भैया का। आ अब जौन है पंच लोग अपने पंचायती में हुई मन मनसायन आ एकरे बदे सुनल जाई राधे श्याम सोटा वाले आ उनके साथी लोगन का ई गौनई।

पंच लोग देखा, राधे श्याम सोटा वाले और उनके साथी लोगन कई गौ नहीं होगल। आ अब अपने पंचैती में काल के कार्यक्रम के बारे में जान लेवल जाए। तो खेती का बात ई हुई बिहाने 6:05 पे। एम्मा भाई विषय रही धान का जो उन्नत प्रजाति हैं वो कौन कौन हैं, आ ये विषय पे जानकारी दी हैं दिनेश कुमार सिंह। और अपन जोन कृषि जगत कार्यक्रम है वो हुई संझा के 6:30 पे। एम्मा बतकही का विषय रही जौ का जोन आयुर्वेदिक महत्व है वो, आ एप्पर डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे से बतेवले हम दिनेश कुमार सिंह भैया। तो देखा ई तो होगल अब काल के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी, और अब आज का भी यहाँ कुल बतकही होगल। आ बोलत बतियाओ देखा पंचो लोग हमन के चले का बेला भी होगल। तो चलत है जा पंचो, राम राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुने फिल्म संगीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में आप सुन रहे थे यस बॉस फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के बोल थे और जतिन ललित का संगीत। अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू का गाया दुश्मन फिल्म का ये गीत।

कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे परदेस फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना शिवपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार निखिल, पिता का नाम धर्मेंद्र बनवासी, इनकी उम्र 19 वर्ष है। ये सोनकर बस्ती पोखरे के पास शिवपुर के निवासी हैं। इनका रंग सांवला, कद 5 फीट 6 इंच है। लापता होने के समय इन्होंने काले रंग की जीन्स और नीला शर्ट पहना हुआ था। ये 21 फरवरी 2025 दोपहर 1:30 बजे से अपने घर से गए, उसके बाद वापस नहीं आए। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें।

थाना चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार मनीषा इनके पति का नाम विनोद कुमार है, निवासी ग्राम खेवसर कला व पोस्ट भोजापुर जिला चंदौली, इनके उम्र 23 वर्ष है, रंग गोरा, लंबाई 4 फुट 6 इंच है और लापता होने के समय इन्होंने लाल रंग की चुनरी पहनी हुई थी। ये 11 अप्रैल 2026 को अपने घर से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें। सोनम चौरसिया पिता का नाम कल्लू चौरसिया, निवासी पांडेपुर नई बस्ती थाना लालपुर वाराणसी। इनकी हाइट 5 फुट है, रंग गेहुआ है, ये 21 साल की हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:18 होने को हैं। ठीक 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो रिले होंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा करें।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पेट्रोल और डीजल के कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक

0: पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
2: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूँ कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
1: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
4: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्र

0: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराये जायें। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केन्द्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

आग ही आग इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और शबीर कुमार की आवाजों में। अनजान के बोल थे और बप्पी लाहिरी का संगीत। और अब आइए सुनते हैं खिलाफ फिल्म का ये गीत जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति के साथ सुरेश पाटकर ने।

उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म तुम मेरे हो से ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और आनंद मिलिंद ने तर्ज बनाई थी। और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक का गाया अपराधी फिल्म का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और लयबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक के गाए फिल्म अपराधी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं उषा टंडन और राहत अली।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी उषा टंडन। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेताब से। आवाज शब्बीर कुमार की है, गीत के बोलों को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

शबीर कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे आप बेताब फिल्म का गीत। अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी का गाया हुआ फिल्म पूनम से।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया अभी आप सुन रहे थे दीदारे यार फिल्म का गीत। अगला गीत फिल्म बेमिसाल से। इस गीत को गाया है किशोर।

बेमिसाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार का गाया रोमांस फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

रोमांस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति

0: के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश के

0: प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की

0: श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम नॉर्डिक कंट्रीज इन इंडिया रोज बाय 200% इन द पास्ट डेकेड।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी अफर्म दैट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द नॉर्डिक कंट्रीज आर सेट टू अशर इन अ न्यू गोल्डन एरा विद द रिसेंटली कंक्लूडेड ट्रेड अग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील। On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल

0: while Prince Yadav has been included in the ODI squad for the first time. Pace spearhead Jasprit Bumrah and senior all-rounder Ravindra Jadeja have been rested for the series. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 213 for 2 in 18.4 overs against host Rajasthan Royals in Jaipur when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनरल मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने

0: कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहिदा मौकिफ है जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
1: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी जरूरत के तई अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा तआवुन की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं, बिलखुसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीरे आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जना मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वजीर आजम के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
2: वजीर आजम पांच मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि ये दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली क्लीदी शराकत दारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तजारत, सरमायाकारी और सनती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकत दारियों का ऐलान किया जाएगा क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और ताउन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाहां हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुजाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर दाखला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा पांच बरस में मुल्क के सबसे तरक्याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।
3: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
0: इससे कबल मरकजी वजीर दाखला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला और सीनियर ओहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के अपने तजुर्बात बताए और अपने हुनर को पेश करने के मौके के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तकारों और बुनकरों की मदद की जरूरत पर जोर दिया ताकि उनका रिवायती फन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो खुद कफील बन सकें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा माह होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदेही की गई थी उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी जाब्तों के तहत एक महफूज, बिला रुकावट और किसी भी कमी के बगैर तरीकेकार के तहत मुकम्मल होना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह तीन रोजा सरकारी दौरे पर आज जनूबी कोरिया के सियोल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा

हूँ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 221 रन का निशाना रखा है। इस कब्ल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने

0: शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई भी की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन।

मोहब्बत कभी दुआ बनकर आंखों में उतरती है तो कभी अधूरी ख्वाहिश बनकर दिल में ठहर जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया समझे न समझे, लेकिन दिल उन्हें इबादत की तरह निभाना चाहता है।

कुछ चेहरे सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ आँखें इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनमें एक पूरा जहां बसता है।

कुछ रिश्ते किस्मत से लड़ते हैं, कुछ मोहब्बत से, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ प्यार तो बहुत होता है लेकिन दिल मजबूर हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। खेल दर्पण कार्यक्रम रिले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़ करके खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
1: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं
2: जी,
1: जो लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
2: प्रतियोगिताओं में? ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेन तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का या खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरी शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गांव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं जैसे ब्लॉक लेवल पर DOPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नवगढ़ वर्ण प्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिया में जैसे मूसाखाण बंदा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरालाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश विश्नोई जेवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरुजी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई, तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा। और बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहां पर अच्छा किया।
1: कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ न कुछ हासिल ही होगा, तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे

0: आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का, कि उसने
1: जी
0: कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कोई कर ले, लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है, कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है। एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए,
1: जी
0: कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है,
1: जी जी
0: नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है।
1: जी
0: उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं। तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है,
1: जी
0: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी हैं उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में।
1: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहां तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पौरुष अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहां पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहां हमको बुलाए थे लोग। और उस नेक्सलाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं, कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा, जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़। आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक हैं, उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं, वो हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है, उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं। और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं। 1-2 साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है। इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहाँ पर खिलाड़ी था, राम सिंह, ये चोलापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाबचंद चिरेगांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमार भी चिरेगांव का ही है। ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्होंने नेशनल में फर्स्ट किया। और अर्जुन पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ। चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में एक गाँव है डबरिया, उस गाँव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। और हम लोग भी जब गाँव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर, पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं, मैं करूं। और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा जा करके यह बताता रहता हूँ कि नहीं, ये करो। जैसे एक लड़की आरती है, यही बगल पचराव गांव की रहने वाली है और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र ही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की ही सुमन यादव, हरहुआ ब्लॉक की है, और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये 6वां स्थान प्राप्त, जो गांव की रहने वाली थी, जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी लॉन्ग जंप करती थी, कभी वॉलीबॉल खेलती थी, कभी कुछ करती थी। बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी, तो सर्विस में देखी इसका पावर बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है, इसको मैंने

0: जेवलिन में डाला और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल, सारे जगह मेडल और वर्ल्ड की 6 रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है।
1: कहने का मतलब यह है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, लाने का,
0: जी
1: उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
0: जी जी
1: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशतता है,
0: जी
1: लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, 2-4-5 उदाहरण आपने दिए,
0: जी
1: इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के
0: बिल्कुल
1: समय में।
0: जी बिल्कुल बढ़ाने की
1: तो
0: आवश्यकता है।
1: वो जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का,
0: जी
1: खास करके खेलों में, वो उज्ज्वल हो।
0: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं।
1: जी
0: जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम लोग छोटे थे गांव जाते दौड़ने वाले आवारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो खेलों के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में ले जा करके सुदूर अंचलों में, ग्राम भारत की 80% जनता गांव में रहती, अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर की अपेक्षा कि गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है। जैसे एथलेटिक्स को लीजिए, पोल वॉल्ट है, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है, 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी कितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, शिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है
1: निश्चित तौर पर, और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, निकल करके आएं और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है, और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, यूनिवर्सिटी में लिस्ट रहे हैं, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल, वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPA एमपीएड डिप्लोमा कराया। छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना, अभी तो मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। बोले अरे वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए, और जो हमारा पैसन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया है।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो, और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, उसमें विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से, ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें

0: अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है।
1: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
0: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है। आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
1: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं और उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इस इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती हैं। वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कहते हैं एक विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
1: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो वो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है, और एक पिता सोचता है समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घुड़सवारी में या घुड़दौड़ में ना, राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना, वो उसकी हार्ट बीट से थपकी देता तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चा उसे पहले समझ जाए, ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनेज में।
0: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
1: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें 4 जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो 4 प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिंग थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
0: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए, क्योंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों, जय हिंद।
2: जय मैम।
0: सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना? तो अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं वो बताइए।
3: मैं अंकिता देवरिया।
4: मैं अदिति राय, गाजीपुर से।
5: मैं आरती, सोनभद्र से।
6: मैं सेजल, सेवापुरी से।
7: मैं मीनाक्षी, टिकरी से।
8: मैं शिवानी यादव, जो की जौनपुर की रहने वाली।
9: मैं आर्य सिंह, बाबतपुर से।
10: मैं रिचा यादव, बाबतपुर की।
11: मैं खुशी पटेल, आयर से।
12: प्रशिष्टि, मैं उन्नाव से।
13: गुंजन यादव, जौनपुर से।
14: पलक यादव, चंदौली।
15: अपूर्वा गुजर, फिरोजाबाद।
0: तो बच्चों, जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे, सवेरे से शुरुआत करें।
16: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का,
10: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहता तो पढ़ लेते, फिर इसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते हैं वर्कआउट के बाद, 8 बजे फिर नाश्ता करते,
17: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
0: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है? लास्ट कॉल
16: 10 बजे तक।
0: तो बच्चों, मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
16: मेरा नाम खुशी पटेल है, मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया है मुझे गेम खेलने के लिए, फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर, हम करेंगे। फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए, फिर मैं धीरे धीरे करती गई, 1-2 साल घर पे प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है, फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए बेच चुका, फिर यहाँ पे आ गए हैं, हॉस्टल में हो

0: गया, 2 साल से हॉस्टल में रहते हैं।
1: तो खुशी आप क्या खेलती हैं?
0: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
1: अच्छा, प्रशिष्टि आप क्या खेलती हैं?
0: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
1: आप कब से खेल रही हैं?
0: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ और सर के अंडर हमने बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वैसे ही केयर करते हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं। हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं।
1: तो सर के पास वापस चलते हैं। कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए। इतने बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
2: कुछ मुश्किल से नहीं होता है, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं, और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। हमने वो पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन बदल गया है, तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता हो ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क। जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
1: संजय जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
2: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम। अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, रोज चोट लगनी ही है, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी, मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं। इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। इनके लिए साई ने व्यवस्था की है इनकी चोटे के लिए और उनका उपचार होता है।
1: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
2: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी
1: खेल के दौरान।
2: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो। अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है। जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है, तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना, अगर सामान्य चोट है तो। उसके बाद अगर वो आप नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
1: अच्छा, श्रोताओं, बातचीत के इस सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएचयू कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
3: थैंक यू मैडम।
1: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
3: मैडम, ये बता दें कि एक जो बीएचयू सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस सुविधा मिल सके। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है, लेकिन अब प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल की बच्चियाँ ज्यादातर इसमें आए। तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
1: जी,
3: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
1: सर, सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
3: सुविधाएं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं, और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है, या जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की, हाँ, हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं, इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
1: हमारे इस बीएचयू कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
3: जी हाँ, बच्चे, मैडम यह है कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं, तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है, और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच।
1: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
2: मैम, पोषण बहुत जरूरी है, और हमारे ये भारतीय खेल पालिकन संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है, क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मीनू तैयार है, वही इनको दिया जाता है उस हिसाब से। सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मीनू है, वो उसको दिया जाता है। फिटनेस की बात पे अगर खिलाड़ी

0: नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं रहेगा, वो बाहर हो जाएगा। इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी। तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि ये फिट रहें और इनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है।
0: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जंपर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
1: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
0: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
1: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं। एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जंपर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है।
0: मैम बहुत अच्छा है आगे। क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
1: एक अकेला ही काफी
0: है। और शुरुआत हो गई है, अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे। अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग, आर्चरी, रेसलिंग, एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है और हर एक गाँव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है। तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में। जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहाँ से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में। तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैम मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे तो लाजवाब। तो खेल का फ्यूचर अच्छा है मैम। अभी ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
1: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीएचयू कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से। साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
0: हाँ मैम बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आद सकती हैं। तो महिलाएं अब आगे हो गई हैं पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और यह हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं और देश का प्रतिनिधित्व भी हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
1: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: श्रोताओ, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: 1, 2, 3, चेक।
1: दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। डीडी फ्री डिश में अब है 100 से ज्यादा टी

टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार यानी

0: नया अवतार यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इस वक्त स्टूडियो के घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। राग है गोरख कल्याण। तबला संगतकार हैं कुबेर नाथ मिश्र।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। राग था गोरख कल्याण। तबला संगतकार थे कुबेर नाथ मिश्र। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़

0: That we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, न्यूज ऑन AIR, DRM और DTH पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। कल प्रातः 5:55 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।